एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल

0: अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी हिंदी में समाचार रिले किए जा रहे थे आकाशवाणी के।

अभी आप सुन रहे थे देश वंदना समूह स्वर में। आइए अब सुनते हैं राम भजन। स्वर दिया है मन्नाडी ने।

मन्नाडे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे राम भजन। आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में ये भजन।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम का अगला भजन आइए सुनते हैं। गायक कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। आज का विषय है मिट्टी के तापमान को सुरक्षित रखने की तकनीक। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अभिनव गौरहा।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज हम खेती किसानी करत हन, लेकिन

0: खेती ला माने भुइयां ला टिकाऊ बनाना भी हमर जिम्मेदारी है। काबर के अवैया पीढ़ी पर बढ़िया मजबूत टिकाऊ खेत बने रहे ओखर भी जिम्मेदारी हमरे। एकरे पर माटी के तापमान ला संतुलित रखे के जिम्मेदारी हमरे। मल्चिंग और जैविक खेती से माटी के तापमान ला संतुलित रखे जा सकत है। जैसे हम गाड़ी चलाथन तो ओमा आयल पानी के व्यवस्था करत रहथन तो गाड़ी है बढ़िया चलते, गाड़ी गर्म नहीं हुए। वैसन है जब हम लगातार खेती करथन और हम उर्वरक के केमिकल केमिकल जिनिस के उपयोग करथन, लगातार फसल लेथन एके फसल लेथन जेखर से माटी के तापमान बढ़ जाते और फसल उत्पादन में फर्क पड़ते। आज आनी बानी तकनीक है जैसे जैविक खेती है, मल्चिंग है, ओखर लाभ लेके हम अपन खेती ला टिकाऊ खेती बना सकत है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़त तापमान, असमय पानी गिरना, गर्म हवा खेती ला प्रभावित करत है। एकर से खेत के माटी ज्यादा गर्म होते, नमी है जल्दी खत्म हो जाते और फसल के पैदावार घटत है। माटी खेत के सबले बड़े पूंजी आए। जब माटी के तापमान बढ़ते त जड़ के विकास रुकते, लाभकारी सूक्ष्म जीव कम हो जाते और भूया के उर्वरता घटे लगते। ऐसन समय में प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, मल्चिंग खेती पर बड़ उपयोगी तकनीक है। मल्चिंग में माटी ला भूसा, सूखे पत्ती, फसल अवशेष या प्लास्टिक से ढके जाते जेखर से माटी के तापमान संतुलित रहते, नमी बने रहते और खर पतवार कम जामते, कम उगते। जैविक खेती में गोबर खाद, कंपोस्ट और जैव उर्वरक मन के उपयोग करे जाते जेखर से माटी के जल धारण क्षमता बढ़ते, सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते और हमर भूया ज्यादा उपजाऊ बनते। ये दोनों तकनीक माटी और पानी के संरक्षण करते और खेती ला टिकाऊ और लाभकारी बनाए में मदद करते। बदलत मौसम में अच्छा व अच्छा पैदावार बर ये व्यवस्था ला अपनाना जरूरी हो गए है। माटी ला ज्यादा गर्म होए से बचाए बर, टिकाऊ खेती ला बढ़ावा दिए बर किसान मन ला वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीक ला अपनाना जरूरी है। मल्चिंग और जैविक खेती के समुचित उपयोग से माटी स्वास्थ्य में सुधार करे जा सकते है और फसल उत्पादन ला स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सकते है। मल्चिंग तकनीक के उपयोग किसान मन खेत में सूखे हुए पत्ती, भूसा, फसल अवशेष, घास या प्लास्टिक के पन्नी के उपयोग कर सकते है जेखर से माटी के नमी संरक्षित रही थे, तापमान नियंत्रित रही थे। फसल कटाई के बाद अवशेष ला जलाए से बचना चाहिए ओ मल्ला, बल्कि उपयोग आजकल तो आनी बानी के मशीन आगे है ओला हम दूसर जगह डार दी या फिर ओखर उपयोग खेत तक ढाके बर करी जेखर से माटी के तापमान नियंत्रित रही थे। जैविक खाद के ज्यादा उपयोग, गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरियर खाद के उपयोग माटी की उर्वरता और जल धारण क्षमता ला बढ़ाए में सहायक सिद्ध होते। जैविक पदार्थ माटी ला ज्यादा गर्म हो से बचाए में भी मदद करते। संतुलित सिंचाई घलो हमन बर लाभप्रद होते। समय में और जरूरत के अनुसार सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसन सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के उपयोग जल संरक्षण और नमी बनाए में ज्यादा सहायक होते। हमन ला हर समय ज्यादा जुताई से भी बचना चाहिए। बार बार और गहरा जुताई माटी के संरचना ला नुकसान पहुंचाते और नमी के हानि ला बढ़ाते। एकर बर हमन ला मिनिमम टिलेज मतलब न्यूनतम जुताई के तकनीक ला अपनाना है। अपन खेत के आसपास वृक्षारोपण और कृषि वानिकी ला बढ़ावा देना है। खेत के आसपास पेड़ पौधा लगाए से तापमान नियंत्रण में रहते और माटी के अपरदन कम होते। कृषि वानिकी प्रणाली माटी संरक्षण पर लाभकारी होते। समय समय में माटी परीक्षण कराना भी हमर खेत के स्वास्थ्य ला जांचते आंकते। माटी परीक्षण करवा के माटी के पोषक स्थिति और पीएच के पता लगाया जा सकते जेखर बाद हम उचित उर्वरक प्रबंधन और तकनीक के चयन से ज्यादा लाभ कमा सकथन। अंत में ही कहबो कि हमन ला जागरूक होना पड़ी। कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसान मन ला भाग लेना चाहिए ताकि आधुनिक और टिकाऊ कृषि तकनीक के जानकारी हमन ला हो सके। राम राम, जय जोहार।
1: मिट्टी के तापमान को सुरक्षित रखने की तकनीक, इस विषय पर खेती की बात अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, स्वर दिया है रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर ने। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डिंग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड है, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। विषय है आज का, सपना क्या है। आलेख है डॉक्टर राजेश टंडन की।

0: सपना क्या है? कोई नाम या सोते वक्त देखा गया कोई दृश्य जो चंद घंटों बाद विस्मृत हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में हजारों दफे सपने देखता है, सोते हुए भी और जागते हुए भी। सोते समय देखे हुए सपने ज्यादातर याद नहीं रहते। जागृत अवस्था में देखे हुए सपने अक्सर टूट जाते हैं, क्योंकि वो सपने नहीं मौका परस्ती होते हैं। सपना पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो कल्पना में तो मजे कर ही लिए। वो सपना नहीं, महज एक सोच है। दरअसल जागृत अवस्था में सपना देखना एक बहुत बड़े साहस का काम है। असंभव से प्रतीत होने वाले लक्ष्य को देखना असली सपना है। ऐसे असंभव सपने लोगों ने देखे भी हैं और पूरे भी किए हैं। ये सभी जुनूनी, साहसी, जाबाज, ईमानदार और धैर्यवान लोग थे। आदमी वही बनता है जैसा वो सोचता है। कोई भी अपनी सोच के आगे नहीं जा सका है। जरा सोच के देखें कि किसी ने तो सोचा होगा कि चांद पर चहलकदमी की जाए, चलते फिरते फोन पर बातें हो जाएं, क्षणांश में सुदूर स्थित मित्र से संपर्क हो जाए। किसी ने तो सोचा होगा हवा में उड़ान भरी जाए, शरीर को कपड़ों से ढांकना भी तो किसी ने सोचा होगा, लाइलाज बीमारियों का इलाज, बिजली, गणित, ज्यामिति, भाप की शक्ति, चक्का, रेडियो, साइकिल, जूता, चप्पल, कुछ भी हम ध्यान करें तो पाएंगे कि किसी हमारे जैसे ही इंसान ने जागृत अवस्था में एक सपना देखा, उसे अपना लक्ष्य बनाया और रेस के ताकतवर घोड़े की तरह, जिसकी आंख के दोनों ओर पट्टे लगे होते हैं, उस लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ा और मंजिल प्राप्त कर ली। गांधी जी ने असंभव सी दिखने वाली भारत की आजादी का सपना देखा, ठान लिया, चल पड़े और बेहद शक्तिशाली फिरंगी हुकूमत ने घुटने टेक दिए। आज से 2500 साल पहले कभी किसी भद्र महिला की कटी नाक देखकर द्रवित हुए प्राचीन महाशल्य चिकित्सक सुश्रुत ने अगर उसे नई नाक देने का सपना न देखा होता तो आज सोचिए न जाने कितने लोग अपने अपने घर से बाहर न निकलने के लिए बाध्य हो जाते। सुश्रुत जी ने बहुत सरल तरीका ढूंढा था। माथे के मांस के एक हिस्से को नाक का स्वरूप देकर उस महिला को नया जीवन प्रदान कर दिया था। आज भी वही 2500 साल पुराना तरीका कारगर है। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि अमुक समय में किसी जुनूनी ने जागृत सपना देखा, ठान लिया और मानव जीवन को अपने अमूल्य उपहार से नई ऊंचाई दी। जो व्यक्ति महान सोचता है वो महान बन जाता है, जो बड़ा सोचता है वो बड़ा बन जाता है। वर्तमान में जो असंभव दिखता है वो तभी संभव होगा जब हम उसका सपना देखेंगे, उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। संभव होने की शुरुआत ही कैसे होगी जब तक हम ठान नहीं लेंगे? चीजें असंभव नहीं होती, बस असंभव प्रतीत होती हैं। एक सपने के टूटने या चकनाचूर होने के बाद दूसरा सपना देखने का हौसला ही जिंदगी है। लेकिन कोई भी सपना किसी जादू से हकीकत नहीं बन सकता है। यदि आपने सपना नहीं देखा है तो कोई दूसरा अपना सपना पूरा करने के लिए आपको अपना साधन बना लेगा। मजबूत इरादा, कड़ी मेहनत और धैर्य से ही सपना पूरा होता है। देखे हुए सपने अगर सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ता बदलें, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ पौधे अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। अपने सपनों को नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी न बनने दें, उसे आकार दें। सच है कि सभी सपने पूरे नहीं होते, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन भी खत्म नहीं होता। गगरी के फूटने से पनघट नहीं खत्म हो जाते। जागृत सपना वो है जो बैठने न दे, चैन न लेने दे। सपना वो नहीं जो सोते समय आए, सपना वो है जो सोने न दे। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
1: सपना क्या है, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं।

ये सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में हम आपको अपने केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला हम अनुप्रसारित करेंगे आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विषय होगा स्वास्थ्य सेवा। कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण समय होता है 7:05 पर। सदाबहार नगमे सुनिएगा 7:30 पर। माटी के स्वर पत्रों पर आधारित फरमाइशी छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। 10:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और 10:30 का समय होगा कार्यक्रम नए तराने का। 9:55 पर और 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। शाम 4:00 संदेश टू सोल्जर्स हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, अब एक नज़र शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज शाम 5:05 पर किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज की बात के तहत विषय होगा खुरा बोनी का महत्व। इसी कार्यक्रम में आज डॉक्टर टी डी पांडे, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, श्रोताओं द्वारा फोन से पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। विषय होगा खरीफ फसलों में उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टर। कार्यक्रम का संचालन करेंगे जीतू भैया। महिला सभा हम प्रसारित करेंगे 5:35 पर। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण अभिव्यक्ति। क्रम में विषय होगा हरित जीवन शैली अपनाने में महिलाओं का योगदान। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:20 पर, और इसका शेष भाग सुनिएगा शाम 7:00। 7:45 का समय होगा चित्रपट संगीत का। रात 8:00 चिट्ठी मिली कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत सुनिएगा रात 8:20 पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला हम रिले करेंगे आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विषय होगा स्वास्थ्य सेवा। 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार, और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम रिले करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं संस्कृत और हिंदी में समाचार। अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा. अथ वार्ताः. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु

0: महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधनमूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात् ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लाख आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लाख ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारत देशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति इष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोक संतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय

0: ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी संस्कृत और हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह स्वागत आप सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम आज सुबह में, और स्वीकार कीजिएगा मेरा स्नेहिल नमस्कार।

काश मैं लौट जाऊं बचपन की उसी वादियों में ए जिंदगी, जहां ना कोई ज़रूरत थी और कोई ज़रूरी न था। याद आता है वो बीता हुआ कल, जब ना कोई फिक्र थी ना कोई जिम्मेदारी, बस दोस्तों का साथ और हर पल एक नया त्यौहार था। श्रोताओं, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने बचपन के दिनों में लौटना न चाहता हो। आज हम अपने इस कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे बच्चों के अधिकार की और उनके प्यार की। श्रोताओं, आज के दिन पूरी दुनिया में आक्रामकता के खिलाफ मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये कोई उत्सव नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है हम सब के लिए और समाज के लिए। श्रोताओं, बच्चों की मुस्कान में दुनिया का सबसे बड़ा सुकून होता है। जब दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध, हिंसा या दंगे होते हैं, तो उसका सबसे बुरा असर मासूम बच्चों पर पड़ता है, जिनका उस नफरत से कोई लेना देना ही नहीं होता है। लड़ाई और हिंसा सिर्फ घरों को नहीं, बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के बचपन, उनके सपनों को छीन लेते हैं। कई बच्चे अपनों को खो देते हैं तो कई बेघर हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो शारीरिक और मानसिक हिंसा का शिकार भी हो जाते हैं। श्रोताओं, इस दिन की शुरुआत 19 अगस्त 1982 में हुई। लेबनान युद्ध के दौरान फिलिस्तीन और लेबनान के निर्दोष बच्चों पर अत्याचारों से आहत होकर संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की, ताकि हम सब मिलकर उन बच्चों के दर्द को समझ सकें जो दुनिया भर में हिंसा और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। श्रोताओं, हम पूरी दुनिया के युद्ध को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर, मोहल्ले और शहर के बच्चों को सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास के बच्चों पर नज़र रखें, उनके साथ बुरा बर्ताव या किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। श्रोताओं, आप अपने घर के बच्चों पर भी नज़र रखें, उनके मित्रों पर भी ध्यान दें। कभी कभी ये भी देखने में आता है कि माता पिता या बच्चे एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जो कि गलत है। शिक्षकों को भी बच्चों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। घर में भी बेटा या बेटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर घर में बच्चे कुछ गलती करते हैं तो उन्हें डांटने की बजाय प्यार से उन्हें समझाएं। हम सभी बच्चों को उनका पूरा पूरा अधिकार दें, उनके लिए ऐसी दुनिया बसाएं जहां सिर्फ प्यार और शांति हो।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेराज़,

0: सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप, आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: स्वागत आप सभी का कार्यक्रम आज सुबह में। महिला सभा हेतु सूचना सुनिएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता का प्रसारण महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 9 जून 2026 दिन मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:00 से 3:30 के बीच की जाएगी, जो फोन पर आधारित कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी नेचुरोपैथी और योगा की डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी, माफ कीजिएगा डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जी। आपसे चर्चा का विषय होगा डॉक्टर से सीधी बात, महिलाओं के स्वास्थ्य में योग की भूमिका। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752, ये हमारा बिलासपुर का एसटीडी कोड, और हमारा फोन नंबर है 310026, दूसरा फोन नंबर 266592। महिला सभा हेतु जो सूचना है वो समाप्त हुई, और कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर टीडी पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11:00 तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों के उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टर, और सुबह 11:00 से 11:30 तक का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 266592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 4 जून 2026 और 5 जून 2026 को शाम 7:30 से 8:00 तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, एक और सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। और कार्यक्रम आज सुबह में आइए सुनते हैं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
2: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय।

0: जी एक दिनी प्रवास पर बिलासपुर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज बसंत विहार स्थित हेलीपैड हेलीकॉप्टर से आएंगे तथा हेमुनगर में आयोजित सुशासन तिहार में शामिल होंगे। इसके अलावा आप जिला अस्पताल में लोकार्पण और मधुबन के पास एजुकेशन सिटी का निरीक्षण करेंगे। साथ ही आप मंथन सभा कक्ष में बैठक भी लेंगे, तत्पश्चात न्यू सर्किट हाउस भी जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों के कारण सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए कहीं कहीं क्षणिक यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। मित्रों, आज ही शहर के 45 परीक्षा केंद्रों में प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा ली जा रही है। परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक का है, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। सभी को शुभकामनाएं। साथ ही सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, कभी कभी कहीं भी किन्हीं कारणों से यातायात की गति प्रभावित हो जाती है, अतः आप अपने घर से सभी कुछ जल्दी ही परीक्षा केंद्रों के लिए निकले ताकि समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में कोई संशय ना रहे। ठीक इसी प्रकार परीक्षा के समाप्त होने पर सभी धैर्य का परिचय देवे, क्योंकि एक साथ एक ही समय में हजारों लोगों के विभिन्न वाहनों से सड़क में आ जाने से सुगम यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। अतः इस समय धीरे धीरे आगे बढ़े, ओवरटेक तो बिल्कुल न करें, अन्यथा जाम की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही शहर के साथ साथ गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, चिलचिलाती धूप एवं तेज गर्मी को देखते हुए शहर के सभी चौक की सिग्नल लाइट को 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखा गया है, किंतु कैमरे चालू हैं, इसलिए सड़क में मनमानी बिल्कुल न करें। जैसे ओवर स्पीड न चलें, दो पहिया में तीन सवारी न चलें, मोबाइल से बातें करते वाहन न चलावें और रॉन्ग साइड भी कभी न जाएं। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आप सुन रहे थे बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में अब बातें डिजिटल धोखाधड़ी यानी कि ऑनलाइन स्कैम्स की। साइबर ठग बेरोजगार युवाओं को, घर में रहने वाली स्त्रियों को, छात्रों को और रिटायर लोगों को हर महीने पैसा कमाने का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं। वे पहले रजिस्ट्रेशन, आईडी एक्टिवेशन या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर अच्छी खासी रकम ले लेते हैं और जब तक हमें पता चलता है कि हम धोखा खा चुके हैं तब तक उनके मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं। इतना ही नहीं श्रोताओं, वैवाहिक विज्ञापनों के माध्यम से भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। हमें सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी भी अपना ओटीपी नंबर, यूपीआई पिन या बैंक से संबंधित कुछ भी बातें किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। अनजान लिंक पर भी कभी क्लिक ना करें। नौकरी के नाम पर अग्रिम फीस जमा ना करें। याद रखें, कभी भी इस प्रकार की धनराशि नहीं ली जाती। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर भरोसा ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ठगी हुई है या कुछ किसी भी प्रकार का धोखा हुआ है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। और चलते चलते श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में हम आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन की जन्म जयंती है। मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वे पहली महिला रहीं। उन्होंने अनेक फिल्मों में काम किया। सुजाता, अनाड़ी, सीमा, मिलन, बंदिनी उनकी मुख्य महिला प्रधान फिल्में रहीं। उन्होंने अपने अभिनय से ये

साबित किया कि एक महिला प्रधान फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा सकती है। श्रोताओं, उन्हें 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत की ओर से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज हम उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आइए सुनते हैं उन्हें पर फिल्माया गया ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आज सुबह समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 7:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है सौदागर। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

सौदागर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। अभिमान फिल्म का ये गाना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल पर SD बर्मन का संगीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सो

ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम चांदनी, शिव हरी का संगीत, आनंद बख्शी के शब्द।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर टी डी पांडे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों के उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टर, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665592। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 4 जून 2026 और 5 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे की ओर। मासूम फिल्म का ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं गायक कलाकार अभिजीत और साधना सरगम। गीत और संगीत है आनंद राज आनंद की।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे जानी दुश्मन फिल्म का ये गीत। वर्मा मलिक के लिखे गीत पर संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री

0: शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में

0: मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को

0: रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और

0: उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of foreign affairs, economy and finance, science and technology, communication and information, and transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in

प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आपने सुना नरेंद्र यादव और पिंकी मरावी की आवाज़ों में। फरमाइशकर्ता हमारे श्रोता साथी नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अज़ीज़, आप लूत्रा खमरिया से। इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र मिला छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाविया सारथी, श्रीमती सुषमा सारथी का। नवागढ़ कटी से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला हथनी पारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश किरण और दुलारी वर्मा का। भाटापारा से आप हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज।

नारायण यदू, लेखराम यदू, राधे श्याम, जितेंद्र साहू भाटापारा से ही आप हैं, सियाराम, अश्विनी पांडे सोनाडीह से, सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ। आइए अब सुनते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया की आवाज में इन श्रोता साथियों की फरमाइश पर ये गीत। ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलोरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त का। कतियापारा जूना बिलासपुर से आप हैं सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। चाटीडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी, मिल्की, बेबी, मीनाक्षी और निधि देवांगन। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले महिला सभा हेतु सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता का प्रसारण महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 9 जून 2026 दिन मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी, जो फ़ोन पर आधारित कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी नेचुरोपैथी और योग की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जी। आपसे चर्चा का विषय होगा डॉक्टर से सीधी बात, महिलाओं के स्वास्थ्य में योगा की भूमिका। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 3100026 और 266592। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड लगाना मत भूलिएगा। बिलासपुर का एसटीडी कोड है 07752। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, एक और सूचना हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों

के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://award.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। सभी प्रकार की जानकारी आप राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर की ओर। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं नवलदास मानिकपुरी और अनुसुईया की आवाज़ों में। पसंद करने वाले इस गीत को हमारे श्रोता साथी हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चांदनी चौक गढ़ई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र सेन और खुशी रौनक सेन, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका, बेबी अनिष्का तन्मय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन, मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से आप हैं शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल और इनके साथी। तो आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अभी आप सुन रहे थे ममता चंद्राकर की आवाज़ में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु डौली और पूर्वेश साहू ने हमें पत्र लिखा था। ग्राम बेलर गांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। राजनांदगांव से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन साहू, दिवेंद्र साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, रजनी देवी, मास्टर प्रणय कुमार साहू। नवागांव कटई से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक झावेंद्र। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर ने इसी गीत को पसंद किया था। बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा ने इसी गीत को पसंद किया था। श्रोताओं, और इस गीत के साथ ही आज का छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 9 बजने वाले हैं। अब से लेकर 9:55 तक आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

विशाल मिश्रा की आवाज में हक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था, विशाल मिश्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में, सईद कादरी की बोल है, मिथुन का संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गदर 2 फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन

गार है, लेकिन जब हिंसा और संघर्ष जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक प्रभावित बचपन होता है। बहुत सारे बच्चे अपने परिवार, घर और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और मानसिक भावनात्मक आघात का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1982 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य दुनिया का ध्यान उन निर्दोष बच्चों की ओर आकर्षित करना है जो किसी न किसी रूप में आक्रामकता और हिंसा का शिकार हुए हैं। ये दिवस सिर्फ संवेदना व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि हम सभी को बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और अस्थिरता का वातावरण है, इन सब से होने वाले दुष्प्रभाव में बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण कैसे प्रदान करें। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ संस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समाज, स्कूल की भी समान भागीदारी ये आवश्यक है। बच्चे प्रेम, विश्वास और संवाद का बच्चों को ये वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। घर, परिवार, विद्यालय, समाज और समाज सभी की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों का उचित संरक्षण, देखभाल हो, उचित शिक्षा व्यवस्था हो, भयमुक्त प्रेमपूर्ण वातावरण मिले ताकि वे अपने सपनों को खुलकर जी सकें। चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सनम रे फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं।

0: सनम रे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। शान की आवाज में मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
5: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय एक और छोटे से अंतराल का है, फिर से हाजिर होंगे।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में आरक्षण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। प्रसून जोशी ने इसे लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी। दोस्तों, आज महान पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम का जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। एसपी बाल सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ गायकों में से हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भाषाओं में अपने मधुर आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया है। आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा एसपी बाल सुब्रमण्यम पर, जरूर सुनिएगा। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थीं सिमर कौर और नवीश रन की। हरमनजीत का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना। अब सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये गाना।

ज़ारा एहसान और जास मनक की आवाज़ों में ये सत्यमेव जयते 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची और जास मनक थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। अब चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आप स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ आज यहीं से इजाजत लेते हैं। नमस्कार।

0: उसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दारा दारा दारा दारा दारा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दारा तारा दारा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।
2: मेरे जीवन सा

1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरि कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता।

0: गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।
1: वो तो बना अपना।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री

श्री श्री मर्यादा रामन्ना उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बालसुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे एसपी बालसुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बालसुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका यह जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एसपी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बालसुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए। पहला

0: दोस्तों एआर रहमान के संगीत में फिल्म रोजा के लिए भी एसपी बाल सुब्रमण्यम ने बेहतरीन गीत गाए हैं।
1: बंधन है प्यार का दे।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एस पी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम अपने

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपीबी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत गाया था।

एसपी बाल सुब्रमण्यम दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत तथा हिंदी फिल्म संगीत के इस महान पार्श्व गायक का निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ। विविध भारती परिवार की ओर से एसपी बाल सुब्रमण्यम की यादों को विनम्र नमन। हम तुम

दुर्ग जिलों में इपोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। डॉक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि खेती केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का आधार है। रायपुर में दूरदर्शन द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री किसान संवाद कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसानों से चर्चा की। श्री साय ने कहा, राज्य सरकार ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरकों, जैविक और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए काम कर रही है। किसानों से नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज की पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी रखी जा रही है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जनसमस्या शिविर में शामिल होंगे। प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:00 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

हिंदी में समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद का पहला तराना हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम ब्रह्मचारी, हसरत जयपुरी के शब्द, शंकर जयकिशन का संगीत। पसंद करने वाले इस गीत को हमारे श्रोता साथी के नाम हैं बाजारपारा बेमितरा से भरत भाई लाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश, बदलापुर मुंबई से आप हैं सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, नागपुर से आप हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि, हथनी पारा भाटापारा से दुर्गा, दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर टी डी पांडे उपस्थित

उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ फसलों के उन्नत किस्मों का चयन एवं उत्पादकता प्रति हेक्टर, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है। श्रोताओं, फोन नंबर को आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारा

समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है। श्रोताओं, फोन नंबर को आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारा फोन नंबर है 310026। आप इस नंबर पर फोन लगाइएगा, 310026। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हमारा फोन नंबर 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। श्रोताओं, इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 4 जून 2026 और 5 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले फरमाइशी गीत की ओर। कन्यादान फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार नीरज और शंकर जयकिशन ने संगीत से सजाया है। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी ग्राम महमदपुर भक्तीन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी दुलौरीन, रेखा मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी प्रीतम कुमार साहू, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता, चंद्रकला प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। भाटापारा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू। भाटापारा से ही आप हैं सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ।

0: श्रोताओं, एक जरूरी सूचना। आज कार्यक्रम किसानवाणी में अपने सवाल पूछने के लिए हमें आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 310026। हमारा फोन नंबर है 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दादी, कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: ओह, थैंक्स बप्पू, बचा लिया। ये रे, तेरी समझदारी का फल।
6: आज ये कहता है स्मार्ट बनो।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आइए अब सुनते हैं राम लखन फिल्म का ये गीत। मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले इस गीत को हमारे श्रोता साथी हैं नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव, योगेश यादव। पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन। जतुका किशनपुर से आप हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम और नाज प्रवीण।

साजन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। समीर के शब्द नदीम शर्मिन ने संगीत दिया था और फरमाइशकर्ता इस गाने के लिए हमारे श्रोता साथी भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर, हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र भेजा था। ग्राम रसेड़ा कलतरा से आप हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास। श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद हम यहीं पर समाप्त करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नए तराने।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला तराना। स्वर है अभिजीत श्रीवास्तव और आकांक्षा शर्मा की, गीतकार जयदीप साहनी, संगीत अमित त्रिवेदी का और फिल्म का नाम अंधाधुन।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का ये गाना। अहमद अनीस और कुमार के शब्द हैं, संगीतकार शारिब तोशी और साथी।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: बजरंगी भाईजान इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अली ने इसे गाया था। कौशर मुनीर की रचना पर संगीत था प्रीतम का।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम नए तराने को आगे बढ़ाने से पहले आइए अब सुनते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
2: नमस्कार, मैं हूं उमा शंकर पांडे। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी एक दिनी प्रवास पर बिलासपुर पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज बसंत विहार स्थित हेलीपैड हेलीकॉप्टर से आएंगे तथा हेमुनगर में आयोजित सुशासन तिहार में शामिल होंगे। इसके अलावा आप जिला अस्पताल में लोकार्पण और मधुबन के पास एजुकेशन सिटी का निरीक्षण करेंगे। साथ ही आप मंथन सभा कक्ष में बैठक भी लेंगे, तत्पश्चात न्यू सर्किट हाउस भी जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों के कारण सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए कहीं कहीं क्षणिक यातायात की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। मित्रों, आज ही शहर के 45 परीक्षा केंद्रों में प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा वैश्विक परीक्षा मंडल के द्वारा ली जा रही है। परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक का है, जिसमें हजारों की संख्या में परीक्षार्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। सभी को शुभकामनाएं। साथ ही सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, कभी कभी कहीं भी किन्हीं कारणों से यातायात की गति

0: प्रभावित हो जाती है। अतः आप अपने घर से सभी कुछ जल्दी ही परीक्षा केंद्रों के लिए निकलें, ताकि समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने में कोई संशय ना रहे। ठीक इसी प्रकार परीक्षा के समाप्त होने पर सभी धैर्य का परिचय देवे, क्योंकि एक साथ एक ही समय में हजारों लोगों के विभिन्न वाहनों से सड़क में आ जाने से सुगम यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। अतः इस समय धीरे धीरे आगे बढ़े, ओवरटेक तो बिल्कुल न करें, अन्यथा जाम की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही शहर के साथ साथ गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, चिलचिलाती धूप एवं तेज गर्मी को देखते हुए शहर के सभी चौक की सिग्नल लाइट को 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखा गया है, किंतु कैमरे चालू हैं, इसलिए सड़क में मनमानी बिल्कुल न करें। जैसे ओवर स्पीड न चलें, दो पहिया में तीन सवारी न चलें, मोबाइल से बातें करते वाहन न चलावें और रॉन्ग साइड भी कभी न जाएं। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो थी श्रोताओं बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम नए तराने के अगले गाने की ओर। बर्फी फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनिधि चौहान और पापोन की आवाज़ों में। गीतकार नीलेश मिश्रा और धुन बनाई है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। गायक कलाकार अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। अमिताभ भट्टाचार्य के शब्द हैं, प्रीतम का संगीत।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम नए तराने का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेडके जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी

0: वहाँ जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजी जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
0: जी
1: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ, जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती
0: जी।
1: है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044045।

0: 1559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री।

0: बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
1: भारत अर्थात इंडिया।
2: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
3: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside.
2: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
2: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
5: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
5: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
5: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ, बोलो।
5: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल।
5: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
5: 5000 वर्ष पहले?
6: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
5: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
6: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
5: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
6: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
5: अच्छा।
6: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
5: जैसे?
6: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
5: वैदिक समूह?
6: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
5: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
6: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
5: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
6: हाँ।
5: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
6: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
5: अच्छा।
6: हाँ।

0: सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
1: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
2: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
2: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: हाँ, ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
2: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
2: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
2: अच्छा।
0: हाँ।
1: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
2: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
2: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
2: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
2: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
2: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
2: अच्छा।
1: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
2: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
2: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
2: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
2: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
2: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
2: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ।
0: हाँ,
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था
2: और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
2: अच्छा।

0: यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्राय स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
2: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा।
1: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
2: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
2: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
3: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
7: लेकिन माँ।
9: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा। जोसेफ
8: जी,
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
9: क्या मिल गया
8: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
9: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
8: मुझे मिल गया।
7: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
9: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
8: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ।

0: उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ, होश में आओ भाई, क्या हुआ?
0: स्टीफन, स्टीफन, माँ, माँ, माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ, इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
2: कुछ भी तो नहीं,
1: कुछ भी तो नहीं है।
0: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है, मगर
0: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ।
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें, तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
0: ठीक है, आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
4: हाँ भाई, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
4: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
6: ना जाने क्या करेंगे,
4: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा मजा आ
6: गया, लगता है कुछ हो गया है।
4: अरे भाई साहब, जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
5: भाई साहब, हट जाइए। आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
4: अरे अरे, वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
5: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
4: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
5: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
4: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, हाँ? स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
5: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
4: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
6: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
4: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
6: बहुत अच्छे, देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
4: अरे जबर, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
6: वो देखो, वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
4: अरे हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया।

0: और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा। शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक हम अनुप्रसारित करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये है प्रेम एल्बम से, ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था, आवाज और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज का जादू है मोहित चौहान और कायम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

0: रियाजुर रहमान सागर का ये कलाम आप सुन रहे थे आशा भोसले और अदनान सामी की आवाजों में। एल्बम था कभी तो नजर मिलाओ। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना, तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और दुर्ग जिले में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। 5 नगरीय निकाय अध्यक्ष, 71, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 34 सरपंच और 107 पंच पदों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की मतगणना इस समय चल रही है। मतों की गणना प्रदेश के निर्धारित मतगणना केंद्रों में की जा रही है। मतगणना कार्य संपन्न कराने के लिए 395 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पहले ही हो चुकी है, इसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा, आरोपियों के खिलाफ FIR और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित काम पर लौटेंगे। गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और उसके कार्य में बाधा के मामले के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट प्रशासनिक विरोध जताते हुए सामूहिक अवकाश पर थे। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश व्यवस्था में बदलाव किया है। इस बार बच्चों को इसके दोनों सेट एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार ने नए शिक्षा सत्र की शुरुआत से पहले ही वितरण प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया। जून से शुरू होने वाले शैक्षणिक से पहले विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई है। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP से सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को संबंधित लोगों की पहचान कर उन्हें होम आइसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से पहले मुंबई में रुका और उसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। छत्तीसगढ़ के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों का चयन दस्तावेज और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा

कल 5 जून को रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला पिंडा मरवाही जिले के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज हो रही है मतगणना। तहसीलदारों ने हड़ताल स्थगित की, आज से काम पर लौटे। और में इबोला वायरस के संदिग्धों के मामले में मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 36 घड़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।

0: begin to take action.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में साजन और मैंने प्यार किया, इन दो फिल्मों के बाद अब बारी आ रही है वंश फिल्म के इस गाने की।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

अले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में, इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

हाँ तो भाई, पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो साथियों, आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आप तक पहुंच चुकी है और आप जान भी चुके हैं कि आज के टेक्स्ट में क्या है खास। तो चलिए हम आपको वो टेक्स्ट, वो इबारत पढ़कर सुना देते हैं। आज का टेक्स्ट है, आज भी जब पुराने गीत रेडियो पर गूंजते हैं तब श्वेत श्याम यादें आंखों में रंग भरती हैं। ऐसे में कोई खास सिर्फ याद नहीं आता, वो फिर से जी उठता है। वो भोली सी सूरत, गहरी आंखों वाली छबीली सुजाता ने भावनाओं का एक पूरा मौसम खुद में समेट रखा था। जाने कब वो बंदिनी बनकर छलिया, अनाड़ी, सौदागर, महाराजा सरस्वती चंद्र को छोड़कर सावन के महीने में कन्हैया की बांसुरी के रंग में अपनी चुनरिया रंग बैठी। कहां तक सुनाऊं साहब, इस छोटी सी गुड़िया की तो लंबी कहानी है, लेकिन आप खानदान की राधा से पेइंग गेस्ट का वादा तो सुनिए जरा। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ये तो थी आज की इबारत और आप सभी जान चुके हैं कि आज इसमें क्या है खास और आज दिन कौन सा है, इसलिए हमने ये इबारत जो है वो इस तरह से आप तक पहुंचाई है। तो बहरहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, आज है 4 जून का दिन और आज जन्मदिन है अभिनेत्री नूतन का, तो ये इबारत उन्हीं के लिए है। वैसे आपको बता दें कि नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी साथियों, बल्कि भारतीय सिनेमा की गरिमा और शालीनता की मिसाल थी। वो उन गीतों की रूह भी थी जो रेडियो से निकलकर दिलों में बस गए। उन पर फिल्माए गीतों को सुनकर यूं लगता है जैसे पुराने दौर का एक दरवाजा फिर से खुल गया है। इनकी फिल्में बीता हुआ वक्त नहीं साथियों, यादों की जीवित धरोहर हैं।

सूतन जी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं इस समय, और बहरहाल हमारे साथी क्या लिख रहे हैं। हाँ देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर के इस सुनहरे सफर में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, आज के गाने अवश्य यादगार होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और आप सबका साथ इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो वहीं हमारे एक दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि 1 माह 5 दिन हो चुके हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में, आप आज आई हैं शायद पहली बार। अरे वाह क्या बात है, इन्होंने दिन महीना सब कुछ याद रखा। बहरहाल आज हम आ गए आपके साथ। और एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि ये है सुरीली सफर की सही इबादत, इबारत नितिन जी के जन्मदिन पर उनके ही गानों पर परफेक्ट इबारत। वैसे भी हमेशा से ही आपने सही इबारत दी है और तहे दिल से शुक्रिया किया है, तो शुक्रिया आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ दिल से जुड़ने के लिए। तो दूसरे साथी लिख पड़े हैं कि आज गद्यांश को पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ, वाकई में हम जो सोच रहे थे वही यहाँ शब्द निरूपित हुआ, यानी एक अनन्य लाजवाब हुस्न मलिका पूर्णतः अभिजात अभिनेत्री नूतन जी की कहानी को सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया गया है। कई दिन बाद शायद ये प्रयोग हुआ है। इन्होंने ढेर सारा धन्यवाद दिया है और लिखा है कि आज बेहतरीन गीतों की माला सजाई जाएगी। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों के गीत हैं। जी हाँ बिल्कुल। आगे लिखा है कि नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी चित्रण बंदिनी सुजाता छलिया अनाड़ी महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है, और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का, तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, इस गाने को सुनकर बताइएगा क्या राय है आपकी।

तो भाई सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर का आगाज हो गया है और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया, फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्म में उनका संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन साथियों, उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था। और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आंखों के लिए लिखा है कि अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थीं, तो यकीनन उनकी आंखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थीं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा, सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हम सफर रोक अपनी नजर, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है। इन्होंने बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं गाते रहेंगे, यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहाँ तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूंगी कि ब्लैक एंड व्हाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था, एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी, आंखों की भाषा और ठहराव था वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा, आप सब साथी, कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन, और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी, प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी बल्कि उन्होंने अपनी आवाज और आंखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना मेकअप

बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है, और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारी कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आंखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। तो एक दूसरे हमारी एक साथी हैं लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने। मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे भाव प्रवण अभिनय। मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार है। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सहज अभिनय बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और मां बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दी। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थी, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है। तो जी हाँ, वो गाती भी थी। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

तो ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थीं। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार को, अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए, में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थीं जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भाव भंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थीं कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नजर और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं, जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरोकर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं, तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन

प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की मिस सौतन की जटिल भावनाएं उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना न बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थे और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी।

और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदिनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थीं। उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से मां का नाम ही नहीं ऊंचा किया। उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया, एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, मां के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफर के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज नाइस एंड इंडिकेट्स मेनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफर फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट। एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है। ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा आगे लिखा है कि नूतन जी की

एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है, ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद हैं। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के जमाने की हीरोइन थी, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियां रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुरील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था, जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा, गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत हो उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है, कहीं अनाड़ी की नायिका, तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम, प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है। उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी, क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं, भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो, या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो, या धर्मेंद्र के साथ एक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो, या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो, या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्म पत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्म पत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए, मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है, एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ, जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी, बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है, तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा, और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं, लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है, गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था, उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया, नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था, ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल, और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये

बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतजार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए जरूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके।

हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही है, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ खराब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी का विषय है मुलाकातें। दोस्तों, मुलाकातें क्यों जरूरी होती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विचार, भावनाएं और पहचान दूसरों के साथ संबंधों से आकार लेती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती, हाव भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, वे सब मिलकर सच्चा जुड़ाव बनाते हैं। यही वजह है कि आमने सामने की मुलाकातें रिश्तों में जान डालती हैं। मिलने जुलने से रिश्तों में मिठास आती है। इन मुलाकातों का असर मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देता है।

दोस्तों मुलाकातें हमें सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराती हैं। दुख बांटने से हल्का लगता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। अकेलेपन में इंसान अपने ही विचारों में उलझ सकता है। लोगों से मिलना उस घेरे को तोड़ता है और मन को संतुलन और सुकून देता है। हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। कितनी परेशानियों का हल किसी न किसी के साथ होने से, बात होने से चुटकियों में दूर चली जाती है। एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की तमाम समस्याओं से लड़ने की हिम्मत दे जाती है, जिसमें सही राय और विचारों के आदान प्रदान में स्पष्टता और सच्चाई हो।

दोस्तों, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उनसे मिलने जुलने से हमारी सोच व्यापक होती है, पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखते हैं, जो किताबों से हमेशा नहीं मिल पाती। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय और मौजूदगी चाहिए। साथ बैठना, चाय पीना, खामोशी साझा करना, ये छोटे पल भरोसा बनाते हैं। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं जिनमें नियमित मुलाकातें होती रहती हों। अच्छी मुलाकातें यादें बनाती हैं, सालों बाद भी वही हंसी, वही बातचीत दिल को गर्म रखती है। जिंदगी सिर्फ कामों की सूची नहीं, बल्कि साझा अनुभवों का संग्रह है, और मुलाकातें ही उन्हें जन्म देती हैं।

0: रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन।

0: ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की।

0: है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में।

0: घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा। हाँ। सारा दर्द, क्योंकि देखिए ना हर किसी की जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ
2: फोन
1: कह दिया
2: नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, तैयार भाई गले लगा लिया,
1: तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी जिंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता
2: हो सकता है। और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
1: बिल्कुल
2: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना,
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था पत्थर कंकड़ उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी। कई लोग झुंड होता था बच्चों का, तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
2: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा सा
1: खास तौर से खा लिया
2: तो भी हम उसे धोखे खा लेते
1: तो थे। कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
2: और भी मीठा
1: होगा और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से

0: जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
1: आपके
0: वो भी
1: क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं
0: लिख भेजें।
1: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन
0: बिल्कुल
1: कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
0: विविध
1: बताइए।
0: भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं
1: हाँ
0: आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्या है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: हम श्रोताओं
0: श्रोताओं
1: के
0: की
1: कमेंट्स कैसे
0: कैसे
1: पढ़ेंगे?
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी

0: देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
1: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खास तौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन लें। और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने

0: को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है। तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके
1: जी
0: परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गई इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी। और उनके पिता मछुआरे थे,
1: देखिए
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें। इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि
1: जी
0: कितने छोटे काम करती थी और
1: जी
0: उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, वे इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी,
0: क्या
1: जिसे
0: बात है।
1: बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है। और
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के।
0: बिल्कुल, और प्रेरणा के स्रोत हैं। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया, और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना।

0: लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, अब वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल
1: और
0: करें, है
1: हम
0: ना।
1: लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे ही आप घुटने तक ही कर
0: अब तो
1: दिया।
0: घुटने तक,
1: हाँ
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल,
1: इतना करते हैं, पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। यह स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
0: बिल्कुल।
1: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
1: जी
0: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे। तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग-अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा, और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
1: छूमंतर हो
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: थी, है ना।
0: लेकिन अब वो समय कहाँ है? और अब समय एक
1: गीत
0: गाना
1: सुने
0: सुनाने का,
1: सुनते हैं गीत।

0: प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ
0: से।
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है ममता जी। एक
0: इन
1: हमारे
0: बीबर ने लिखा था ये
1: जी
0: गाना, और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दे। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: वैसे एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेहिल स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक श्रोता कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं, बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़ी बड़े होने के बाद याद रहती है। तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं।
1: वैसे ही
0: तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो ये पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
0: जी। तो वैसे भी ये कहा जाता है, महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशील सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए, जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास

दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं

0: ऐसी कुछ और ही होती है, और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा
0: जताते
1: जा
0: हैं। हाँ
1: प्यार तलाशा जाने लगता
0: जी।
1: है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक
0: जी।
1: श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था
0: कोरोना
1: कोरोना
0: काल।
1: समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें
0: बस
1: आप।
0: हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है,
1: बिल्कुल।
0: कहाँ हद से ज्यादा नहीं
1: हाँ,
0: आगे बढ़ना है और कहाँ
1: और
0: हमें गले
1: खास
0: लगाना
1: तौर
0: है।
1: से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय आप गाना सुनवा दे।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी
0: आम
1: आज।
0: आम बहुत खास है कहने
1: आम
0: को
1: आज
0: आम।
1: खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बहार आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में,
1: हाँ
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइप, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का
1: कभी
0: रस
1: मैंगो
0: पराठे के
1: शेक बना
0: साथ, मैंगो
1: के।
0: शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
0: शक्कर
1: दो।
0: डाल दी।
1: फिर
0: हाँ
1: माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है उसमें थोड़ा दूध डाल दो, फिर उसमें इलायची डाल दो,
0: ज्यादा
1: ऐसे करते करते करते फिर उसमें
0: हो
1: थोड़ी
0: जाता।
1: बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, तो ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो।
0: बस
1: हाँ
0: मतलब एक आम जैसे
1: हाँ
0: तैसे,
1: हाँ खा
0: उससे ज्यादा
1: लिया।
0: नहीं खाना
1: और
0: है
1: फिर अगर
0: तो
1: जब
0: ये।
1: आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान
0: अच्छा,
1: रख
0: तो
1: सकते।
0: मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल
0: हाँ,
1: खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन हो गए, क्योंकि
1: हाँ
0: अमूमन ये कहा जाता है, अरे क्या बना है, आम का रस और पूड़ी,
1: पूरी।
0: तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूड़ी खा चुके हैं।
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आमरस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने में।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में
1: जी
0: खासतौर से। ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो
1: चौसा
0: उसमें
1: आम भी
0: जो,
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत
1: बिल्कुल
0: नहीं है।
1: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता
0: अभी
1: है।
0: लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम
1: हाँ
0: बहुत मीठा आ रहा।
1: केसर आम है, फिर उसके बाद में जो बैगन फली आम जो आता है वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूं।
0: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं,
1: जी
0: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं, और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले खाए नहीं, लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं,
1: जी
0: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या
1: जी
0: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है, वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
1: अपने आप उग
0: पनप
1: जाते
0: जाते हैं, उग जाते हैं।
1: हैं।
0: जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी
1: हाँ
0: हमने कुछ गुठलियों से आम
1: हम
0: लगाए
1: लगाए
0: हैं,
1: हैं।
0: और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक

0: श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
1: हाँ,
0: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
1: और वो
0: लेते थे।
1: छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
0: हाँ
1: जी, वो
0: हाँ
1: आते
0: और
1: थे।
0: आप तो कह रही कि एक आम दो
1: अब
0: फाक वो
1: ओ ममता जी, उस जमाने में तो
0: तो
1: 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
0: उसमें,
1: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
0: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
1: हाँ,
0: भी,
1: केमिकल नहीं
0: कोई
1: होते
0: दवा
1: थे।
0: मिला के नहीं, वो सीधे देसी
1: और
0: आम
1: खेलते
0: मिलता
1: कितने
0: था।
1: थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रखकर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों के ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे, और
1: ये
0: आम
1: ओठों
0: का
1: के यहाँ पे।
0: और आम का पना भी बनता था।
1: हाँ
0: और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
1: ओहो,
0: तो
1: ये
0: ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही नहीं निराली
1: और
0: है।
1: आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
0: हाँ,
1: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम
1: घी लगा
0: पापड़।
1: के, आम पापड़ उसमें डाल के, और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा
1: जी
0: जाता है
1: जी
0: जिसे। तो और बोलिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना। तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ,
1: क्या बात
0: शाम
1: है।
0: को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वार फली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है।
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है, और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वे पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं
1: बताया
0: मिलाना
1: था।
0: है
1: बिल्कुल,
0: उसे।
1: मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मींस प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सकें।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है, क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब बुक्स।

0: शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए, आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा न जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारी इलेक्ट्रिक हो रखी हैं जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो ग्रह 4 कंप्लायंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पे काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिए, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और

0: एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
2: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
2: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी बेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
2: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
0: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायो मेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
2: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
2: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
2: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
2: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
0: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर

0: विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिफ रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
0: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
0: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
0: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
0: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: तो किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन

0: इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार इशफाक अहमद जी से। सर, स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती है, क्या वो सब ई वेस्ट में आती है?
1: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती है। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
0: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें

0: पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं, जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए, 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस, व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन, टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर, स्वागत है शो में। प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
2: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
1: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं। क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
2: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
0: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं।
0: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है। जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
1: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफ गार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट

0: इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
1: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है। हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है, तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा, तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े जूते

किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव। और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर।
3: श्रोताओं, संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के इस वक्त 5 बजे हैं। लीजिए, पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा। लीजिए सुनिए।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा,

0: इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये महुआडी, कोनपारा, संतपारा, फुटसेरा, टिकलीपारा, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये सामर सिंघा, सोहनपुर, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, गलीमार, लोटान, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये गीत कुंवारी, गिरारी, पतरा पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। चलिए अब रुख करते हैं कार्यक्रम किसानवाणी की ओर।

किसान वाणी कार्यक्रम में मैं जीवन भैया जम्मो श्रोता संगवारी भाई बहनी मन के स्वागत करत हो। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान भाई हो खेती किसानी के काम बोता बिल्कुल चेत लगा के लगे हो, काहे बेरा अब शुरू हो जाइए दे खेत के साफ सफाई और घुरुआ के खातू ल खेत तक पहुँचाए काम बिल्कुल किसान मन के चलत है। अब फिर बात करबो जी आज खुर्रा बोनी के महत्व, एकर महत्व बहुत होते। पहली देखन सबो खेत मन ला बढ़िया किसान मन अदरक अकरस के पानी गिरा तो जोत की राखे रहे बढ़िया।

0: डूबी कान जमो भुंजा जाय रहे और जैसे पानी गिरा एक पानी ता फिर धान ल छिड़क जेखर से किसान मन के धान ह अड़बड़ बेरा लंबा समय तक धान ह जरी पकड़ के बढ़िया गहराई तक जाए और मजबूत उखर जेन पेड़ हो उखर जेन क्या कहते बाली भी लंबा लंबा हुआ है ना देखें तो धान में बढ़िया रिग बिग ले जामे पानी पाए तहाँ और बंद खादा घलो मन जामे और यही बंद खादा जेन जामे तेने हर हमर किसान मन के एक बढ़िया खातु के काम करत रही से जेखर से उनला औ वक्त जैसे रासायनिक खातु ला हमर किसान मन अब डालते ओखर जरूरत नहीं पड़त रही से ये एकर फायदा रहे जमीन ह पोला रहे धान ह बढ़िया अंदर तक दरिल खोब है और एखर ले बढ़िया ओखर जेन विकास हुए पौधा मन के मजबूत बने है ना। फिर भाई पानी ह गिरते जाए किसान मन जब पानी ह भरे और एक बित्ता के हो गए धान एक डोकवा ले ज़्यादा एक डेढ़ बित्ता के फिर ओकर बियासी करे बर बढ़िया ओकर बियासी कर देते से जेखर से लेंझा फोर के सब कोती खेत में बढ़िया बगरा दें और वही धान है देखो 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब लेंझा फोरें तो ऐसे लगा कि ये धान है अलग अलग हो गए फिर वही धान किसान भाई आप मन के जेन घास फूस ला नींद के दबाए रहो वही है खातू बन जाए जेखर से फिर वह पूछो तो धान के फिर उपज लगा पूछो संगी हो आज देखो वो विधि ल भुला के सबो रोपा विधि में किसान भाई मन लग गए हैं अब एमा एक एक के बार अपन लगा दें ऐसे करके उमन यही विधि अपनावा थे तो भाई खुर्रा बोनी और खुर्रा जोताई के घला अड़बड़ महत्तम है ना। तो भाई ये खर्चा भी कम आवे और एकर से किसान मन लगा है ज़्यादा उत्पादन घला मिलत है कम खर्चा में तो एकर ये महत्तम रही से फिर चला आज इंतजार करत रहो संगी हो क्या है हेलो किसान वाड़ी फोन इन कार्यक्रम है ना। तो आज के जिन विषय है खरीफ फसल के उन्नत किस्म के चयन और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर है ना। विशेषज्ञ डॉक्टर टी डी पांडे प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर इंखर से गोर बात करते हैं हमारे जीतू भैया तो सुना ये फोन इन कार्यक्रम के अंश ला
1: राम राम जय जोहार आप जम्मो किसान भाई बहनी के स्वागत है हमर कार्यक्रम हेलो किसानवाड़ी फोन इन मा। किसान भाई हो का हाल चाल है कैसन है जैसे आपन जानता हम आज के दिन आपन पर बढ़िया सकेल के लाथन हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम जोन में आप प्रत्यक्ष रूप से फोन के माध्यम से हमर विशेषज्ञ मन से जुड़ता अपन समस्या सवाल और विषय ऊपर अपन जिज्ञासा ल रखता और विशेषज्ञ मन द्वारा ओखर निदान ल पाता। आज ही कड़ी में समसामयिक विषय सुघर लेके आए हैं विषय है खरीफ फसल मन के उन्नत किस्म के चयन और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर। ये विषय ऊपर आपके जौन भी सवाल समस्या जिज्ञासा हो ही फोन लगा के पूछ ले हा। आज हमारे बीच ये विषय ऊपर सुघर जानकारी आप मन के सवाल समस्या जिज्ञासा के निराकरण करे बर जाने माने हमारे बिलासपुर महाविद्यालय के प्राध्यापक और वैज्ञानिक डॉक्टर टी डी पांडे जी उपस्थित हवे। सबले पहली हम अपन पहुना के स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है कार्यक्रम अपन ला राम राम जय जोहार।
2: जय जोहार जीतू भैया और किसान भाइयों को भी राम राम। और आज बहुत बढ़िया समसामयिक विषय है उस पर हमारी परिचर्चा होगी जिससे आपको लोगों को लाभ मिलेगा।
1: हाँ काबर अब खरीफ के सीजन लठी आ गए साफ सफाई किसान भाई मन खेत के खार के करत हैं कुछ दिन बाद थरहा दे दही जोन भी किसान भाई मुख्य फसल तो इसे धान है फिर किसान भाई मन धान के अलावा राहेर कोनो किसान भाई मन फल्ली दाना मूंगफली लगाते हैं और खेती करते हैं आज जम्मो विषय ऊपर चर्चा हुई। तो डॉक्टर साहब जैसे आज के हमारे विषय है खरीफ फसल के उन्नत किस्म के चयन और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जोन भी है कौन कौन सा ऐसा खरीफ के फसल है जिन हमारे क्षेत्र में किसान भाई मन ज्यादा करके लगाते हैं।
2: अपने छत्तीसगढ़ में आमतौर से किस खरीफ की जो मुख्य फसलें हैं उनमें धान है मक्का है कोदो कुटकी रागी बहुत कम मात्रा में लगाते हैं लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि इनकी भी खेती की जाती है। अच्छा। इसके अलावा जो तिलहनी फसलें हैं खरीफ में लगाते हैं उनमें से मूंगफली है सोयाबीन है तिल है राम तिल है जिसमें मूंगफली और तिल का क्षेत्रफल ज्यादा है। इसके अलावा दलहनी फसलों में अरहर है अरहर बहुत ही मुख्य फसल होती है क्योंकि आम आदमी के जीवन में इसको प्रोटीन भरी फसल होती है दाल बड़ी आवश्यक फसल होती है। इसके अलावा अपने छत्तीसगढ़ में उड़द का जो बड़ा बनता है वो बहुत प्रसिद्ध है उड़द की भी खेती अच्छी प्रकार से की जाती है मूंग की और कुछ एरिया में कुल्थी की भी खेती की जाती है। इस प्रकार से

0: एक कुछ ऐसी फसलें हैं जो खरीफ क्रॉप में, खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती हैं अपने छत्तीसगढ़ में।
1: सबले पहले जैसे मुख्य फसल है हमारे धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ के धान। तो धान के जैसे जैसे किस्म है, अवधि है, ओखर बारे में हमन ला बढ़िया बता।
0: देखिए, जब भी हम धान की फसल उगाते हैं तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि हमारा बीज उपयुक्त बीज हो, क्योंकि यदि हम बीज का सही प्रकार से चयन करते हैं तो ये मान के चला जाता है कि 20% जो

0: चारा भी पैदा होता है और इसका जो लोकल वैरायटी होती है, स्थानीय किस्में होती हैं, उनसे ज्यादा इनमें उत्पादन प्राप्त होता है।
1: अच्छा, तो ऐसा किस्म कौन कौन सा है, एला हमर किसान भाई मन ला बतावा।
0: देखिए, धान की तो मैं बहुत सारी किस्में हैं जिनका उपयोग, लेकिन हमको अपने क्षेत्र की जो भूमि की परिस्थितियां हैं और हमारे यहाँ जो पानी का पैटर्न है, कितना गिरता है, कैसे गिरता है, उन चीजों का जलवायु के आधार पर भी किस्मों का चयन करना आवश्यक होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, काल जुड़ गए, ले लेथन फिर गोठियाबो। हेलो, किसान वाड़ी कार्यक्रम में आपके स्वागत है भैया, बतावा कहाँ ले बोला था।
2: भैया, मैं नगर पंचायत मल्हार ले जाऊंगा।
1: वर्मा जी, आपके स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बतावा का हाल चाल है, कैसा है, का प्रश्न है आपके आज।
2: भैया, जैसे आज के प्रश्न ये, अब हमन के किसानी के दिन आ गए, धान पान बोए के, तो हमन ऐसे का धान लगाए, का बीजा जिन बढ़िया अच्छा उत्पादन दे। हाँ,
1: तो आपके भुइया कैसन है।
2: हमन के भुइया है भैया, कन्हार भुइया है और सामान्य, न ज्यादा पानी भरे न सूखा न हो,
1: अच्छा मध्यम भुइया है। तो चला डॉक्टर
2: मध्यम
1: साहब,
2: भुइया है।
1: डॉक्टर साहब आपके सवाल के निराकरण करत हैं।
2: हाँ, डॉक्टर साहब पांडे जी लभी, मोर नमस्कार और प्रणाम है।
0: हाँ, नमस्कार नमस्कार वर्मा जी, आप तो चिर परिचित व्यक्ति हैं और बड़ा बढ़िया आपका सवाल है। उसमें क्या है, अब आपकी ये जमीन संचित है कि असिंचित अवस्था में है।
2: सिंचित सिंचित
0: हाँ,
2: है।
0: तो सिंचित अवस्था में देखिए कई प्रकार की किस्में हैं, जिनमें से आप जानते भी होंगे कि कुछ सुगंधित फसलें हैं, किस्में हैं, और कुछ असुगंधित फसलें हैं। तो सुगंधित फसलें में जैसे बादशाह भोग सिलेक्शन एक है, यदि इसको लगाते
2: अच्छा।
0: हैं, इसकी अवधि 140 से 145 दिन में पककर के तैयार हो जाती है, क्योंकि जो भी कन्हार भूमि होती है उसमें ज्यादा दिनों की पकने वाली किस्मों को हम लगाते हैं, क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था हमको सितंबर अक्टूबर तक बनी रहती है। इसलिए ऐसी फसलें लगाते हैं जिनकी अवधि कम से कम 140 से 150 दिन के आसपास होती है,
2: हाँ, होना चाहिए।
0: होना
2: ठीक
0: चाहिए, तो ये लगाते हैं। इसके बाद हमारे विश्वविद्यालय से भी एक किस्म जो हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध भी है, छत्तीसगढ़ सुगंधित
2: अच्छा।
0: धान होती है, उसको भी लगा सकते हैं, वो 135 से 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, उसको
2: तैयार हो
0: छत्तीसगढ़
2: जाती। जी जी
0: सुगंधित भोग के नाम से भी जानते हैं, है ना।
2: एक तो बतावा डॉक्टर साहब, हम छत्तीसगढ़ देवभोग लगाना चाहते हैं, का ये भी है, हो सका।
0: हाँ, ये छत्तीसगढ़ देवभोग है ना, 135 से 140 दिन में पककर के तैयार होती है और इसका 40 से 45 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसको आप आसानी से लगा सकते हो, लगाने का समय आपको ध्यान देना कि थोड़ा जल्दी लगाएंगे, क्योंकि आपको 130 से 145 दिन यदि सिंचित अवस्था है तो आप इसको जून के प्रथम वीक में, अभी मतलब बहुत अच्छा है कि इसकी नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार जब हो जाती है तो 20 से 25 दिन में नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए, रोपाई कर दीजिए, तो आपको सही समय में ये धान पक करके तैयार हो जाएगी और उस खेत में आप फिर दूसरी फसल भी ले सकते हैं।
2: और जैसे डॉक्टर साहब, हमला अभी तो हमार खाए पर हम लगाबो कहा सुगंधित धान ला, और बेचना है तो हमें का धान लगाना चाहिए जन बढ़िया उत्पादन रहे और बाजार मूल्य मिले।
0: हाँ, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ तेजस्वी जो अपने विश्वविद्यालय से निकली हुई किस्में हैं, छत्तीसगढ़ तेजस है, ये लगा सकते हैं। इनकी जो 130 से 135 दिन में पककर के तैयार हो जाती है। इसके अलावा स्वर्णा है, महामाया है, वो आज भी किसानों में बहुत ही लोकप्रिय है, इसलिए उसको भी आप लगा सकते हैं। MTU 1001 है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है, इसको आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से DRR धान 51 है, ये भी आपको 135 से 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और इसका दाना जो होता है छोटा होता है, मोटा होता है और सिंचित निचली भूमि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो ऐसी कई किस्में हैं जिनको आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी आपकी कर्मा मौसरी का नाम सुने होंगे।
2: हाँ, जानते हैं।
0: हाँ, राजेश्वरी है, दुर्गेश्वरी है, ये 120 से 125 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, तो इनको भी लगाया जा सकता है। चंद्रहासिनी है, 120 से 125 दिन में। तो यानी सिंचित यदि व्यवस्था है किसान भाई के पास, तो उसके पास बहुत ज्यादा चयन के लिए किस्में हैं जिनको चयन करके आप जो ज्यादा आपको अच्छा लगे उनको लगा सकते हैं।
1: चला भैया, आप मन फोन लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: हाँ, राम राम।
0: राम राम राम राम
2: राम
0: वर्मा जी, राम राम। जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी किस्में हैं उसके जलवायु के आधार पर भी हमें उनकी अनुकूलता कहाँ पर है,
1: हाँ।
0: कहाँ पर उनको उगाया जा सकता है। बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं, जैसे हमारी जो रिसर्च अनुसंधान प्रोजेक्ट होते हैं उनके द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में धान की

0: किस्मों को उगाया जाता है, और दूसरे प्रदेश की किस्में भी यहाँ उगाते हैं, हमारे यहाँ की किस्में भी दूसरे प्रदेश में जाती हैं, और जो जहाँ के लिए अच्छी उपयुक्त होती है, इसकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद वो किस्म जहाँ के लिए उपयुक्त होती है वहाँ के लिए सिफारिश की जाती है।
1: जी
0: इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि हमारी वहाँ की मृदा कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, और वहाँ की अनुकूलता कैसा है, उसके आधार पर हम बीज का चयन
1: एक
0: करेंगे।
1: रे संग फिर कालर जुड़ गए हैं, ले ले।
2: हेलो
1: हेलो, आपके स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम में। बतावा कहाँ ले बोला था?
2: हाँ, दत्रेंगिल विश्राम यदु बोला था भैया। राम राम।
1: वाह यदु जी, स्वागत है आपके। का हाल चाल है?
2: सब बढ़िया भाई।
1: तो बतावा का प्रश्न है?
2: ओ, बीज के चुनाव कैसे ढंग के करना चाहिए, एकरे बारे में जानकारी चाहते हैं डॉक्टर से।
1: ता कौन सा फसल लगा?
2: सर ने लगाबो कहा था ना, एक बासमती आएगा, एक
1: बासमती कहाँ ले डर रहती बार?
2: बासमती आए है ना, छत्तीसगढ़ में पहुंच गए भैया। बासमती धान
1: नहीं,
2: अच्छा है वो है।
1: पहुंच तो गए हैं, तब फिर बोला खाया बार उगाहा के अमेरिका भेजिया।
2: छत्तीसगढ़ में देखा चल गया,
1: अच्छा, मतलब
2: देखो
1: खाए
2: कहा
1: बार
2: था
1: लगा था, है
2: नूला।
1: ना? बहुत बढ़िया। तब भूया कैसन है आपके खेत? हा, सिंचित है कि असिंचित
2: डोमस
1: है?
2: है, कन्हार हवेगा डोमस है, वो मटासी तको है,
1: अच्छा, मटासी कन्हार दोनों है, और सिंचित अवस्था है कि
2: दोनों
1: असिंचित,
2: आए।
1: मतलब ट्यूबवेल के साधन हवा है कि भगवान भरोसा है?
2: भगवान भरोसा है भाई, नहीं है शीर्रा है खेत मन्ना, एक जगह
1: आओ
2: नहीं है,
1: लेवा बढ़िया किस्म की
2: नाला
1: जानकारी
2: पानी
1: आपको
2: पलते
1: देते
2: भाई।
1: हैं। आप लोग बढ़िया जानकारी देते हैं, हमारे पांडे जी आए हैं।
2: हाँ ठीक भैया। हाँ
0: हाँ तो यदु जी, राम राम।
2: राम राम भैया। राम राम। राम राम।
0: चलिए, आपकी कन्हार जमीन है, वहाँ पर निश्चित रूप से अभी जो आप किस्मों का मैं बात कर रहे हैं
2: हाँ
0: कि, तो उसके अलावा भी जैसे हमारे
2: हाँ
0: यहाँ की जो सुगंधित किस्में हैं उसको भी
2: हाँ
0: आप लगा सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ देवभोग
2: अच्छा
0: है, जिंको
2: हाँ
0: रायस है, इसमें जिंक की मात्रा अच्छी होती है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता
2: अच्छा
0: है, और ये
2: अच्छा
0: आपकी डोरसा वाली भूमि जो आप बात कर रहे हैं, डोरसा और कन्हार, इसमें भी डोरसा में
2: हाँ
0: भी लगा सकते हैं और कन्हार भूमि में लगा सकते हैं। ये क्या है, 130 से 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है।
2: अच्छा।
0: और आप कौन सी किस्म, कर्मा मौसरी की बात कर रहे थे, कर्मा मौसरी बहुत अच्छी किस्म होती है और ये एक सौ
2: हाँ
0: 125 से 130 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, और सिंचित भूमि के लिए तो अति उपयुक्त होती है, लेकिन जहाँ सिंचित की
2: हाँ
0: व्यवस्था नहीं है वहाँ भी आप
2: अच्छा
0: जब वर्षा काल चालू होता है, मानसून की वर्षा चालू होती है, उस समय आप उस पल्हा यानी नर्सरी लगा दीजिए, और उसके बाद नर्सरी जब 30 से 35, तो जितना जल्दी हो सके खेत में इन किस्मों को लगाना चाहिए। लेट करने से फिर उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आगे चल
2: अच्छा
0: करके यदि पानी फसल को नहीं मिल
2: हाँ
0: पाता जितना पानी की आवश्यकता होती है तो फसल को नुकसान
2: हाँ
0: होता है। इसलिए फसल का चयन
2: हाँ
0: करने के साथ साथ हमको समय का भी ध्यान देना है कि सही समय में
2: अच्छा
0: यदि हम फसल को लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमको अच्छी वृद्धि प्राप्त होती
2: हाँ
0: है, बढ़वार प्राप्त होती है और उत्पादन प्राप्त होता है।
2: अच्छा। चल
1: ठीक है यदु जी,
2: ठीक भैया, धन्यवाद
1: चला फोन लगाया है, बहुत
2: धन्यवाद भाई
1: बहुत
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद। इसके बाद क्या है, जब हम ये देख लेते हैं कि क्लाइमेट मतलब जलवायु, मिट्टी और उसकी अनुकूलता है, इसके बाद ये भी देखना चाहिए कि किस्में जो होती हैं यदि पेस्ट एंड डिसीज यानी कीट और व्याधियों के लिए यदि रेजिस्टेंट होती हैं, तो उससे ये फायदा होता है कि हमको उन किस्मों में किसी प्रकार से इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवा या फफूंद नाशक दवाओं का उपयोग नहीं करना पड़ता, और जो हमको उत्पादन प्राप्त होगा वो रसायन विमुक्त होगा, रसायन युक्त नहीं होगा, रासायनिक से विमुक्त होगा, इस प्रकार से इन फसलों को लगाना चाहिए।
1: चला बहुत बढ़िया। एकरे संग हमारे फिर कालर जुड़ गए हैं, ले लेता। हेलो
2: हेलो।
1: हेलो भैया, बतावा कहाँ ले बोला था? स्वागत है आपके कार्यक्रम माँ।
3: सिंगारबाड़ी से भगत राम पटेल बोला था भैया। मैं यहाँ
1: पटेल जी, आपके स्वागत है कार्यक्रम माँ।
3: आप मल्ला और डॉक्टर साहब जी मल्ला, राम राम जाते।
0: राम राम
1: राम
0: राम
1: भैया।
3: खरीफ के फसल के जिन उन्नत जिन बीज है, तो अब बुआई के समय आते, तो हम ये जानना चाहते रहे कि हम लोग कैसे पता चले कि बीज जिन है वो तो उन्नत किस्म के है, अच्छा है, और ये जिन है हमला एक प्रकार से अच्छा उत्पादन दे सकते, तो इसके बारे में जानना चाहते हैं।
0: अच्छा, नहीं तो वो कौन सी फसल को आप लगाना है?
3: अमन का पहले तो धाने के बारे में पूछना चाहते।
0: अच्छा, तो देखिए इसमें आजकल जैसे बीज के बारे में है, तो आपको जो बीज निगम के द्वारा आपको प्रमाणित बीज मिलते हैं, आधारी बीज मिलते, उन बीजों का उपयोग करेंगे आप। क्या है, एक संस्थाएं होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये आप लोगों के सुविधा के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, या कि कृषि महाविद्यालय है वहां पर भी बीज का उत्पादन किया जाता है, और वो बीज को आप पहचानने के लिए वो जो बैग होते हैं उसमें वो सब कुछ लिखा रहता है, एक उसमें टैग लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि ये इतने प्रतिशत शुद्ध है, इसमें इतने प्रतिशत इसकी अंकुरण क्षमता होती है और ये प्रमाणित बीज है कि फाउंडेशन या आधार सीड है। तो वहीं से बीज आप जब खरीदेंगे तब आप निश्चित रूप से वो सही बीज प्राप्त कर।

0: लगाएंगे। तो चाहे धान का बीज हो और किसी दलहनी फसल का बीज हो या तिलहनी फसल का बीज हो, उन बीजों को आप वहाँ से लीजिए तो प्रमाणित बीज रहते हैं, इसलिए आप उन प्रमाणित बीजों का ही लगाइए। और कुछ
1: तो डॉक्टर साहब, हम एक सवाल जानना चाहते हैं कि जैसे फसल में हम धान की फसल है कई तो लिखे रहते कि 90 दिन के है, कई लिखे 120 दिन के, तो का ये है जमीन और वर्षा ऊपर भी निर्धारित रहते हैं?
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जमीन के आधार पर, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ की जमीन की परिस्थितियाँ हैं वो 3 से 4 प्रकार की होती हैं। तो जैसे मटासी है, डोरसा है, कन्हार है या कि टिकरा जमीन है, तो उसके आधार पर आपकी धान की किस्मों का, या पहले तो आपको फसल चयन करना है, फिर फसल के अंदर किस्मों का चयन करना है। तो जहाँ पानी की बहुत कम व्यवस्था है वहाँ पर जाकर के आप उड़द, मूंग, तिलहनी या अन्य दलहनी फसल लगा सकते हैं, तिलहनी फसल लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पानी की व्यवस्था ज़्यादा होती है वहाँ पर हम धान की किस्में लगाते हैं। फिर धान की किस्मों में भी हम ये चयन करते हैं कि वो धान की किस्म जल्दी पकने वाली है, मध्यम अवधि में पकने वाली है या देर में पकने वाली है, वो फिर लैंड सिचुएशन के अनुसार, भूमि के सिचुएशन के अनुसार हम उन किस्मों का चयन करते हैं। जो जल्दी पकने वाली होती हैं उनको हम टिकरा जमीन में, ऊपरी जमीन में लगाते हैं, फिर जो मध्यम अवधि में पकने वाली होती हैं उनको हम मटासी और डोरसा में लगाते हैं, और जो ज़्यादा दिनों में पकने वाली होती हैं उनको हम कन्हार भूमि में लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी हमको ज़्यादा मिलता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है थोड़ा भारी किस्म की होती है, इसलिए उनकी उनकी जल धारण क्षमता भी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा दिनों में पकने वाली किस्में, आप जैसे अभी हम किस्में बता रहे थे कि कर्मा मासुरी है, छत्तीसगढ़ तेजस धान है, इन धानों को हम वहाँ छत्तीसगढ़, ये आपकी आई जी की राजेश्वरी है, ये मध्यम अवधि वाली हैं, 120 से 25 दिन में पक कर के तैयार होती हैं। इसी प्रकार से महेश्वरी है, दुर्गेश्वरी, ये सभी हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जनरेट की गई, मतलब विकसित की गई किस्में हैं, उनको लगाइए, क्योंकि ये सभी किस्में हमारे क्षेत्र की जमीन और जलवायु के आधार पर विकसित की गई हैं, जिससे इनका उत्पादन अच्छा हो और किसान हमारे समृद्ध हो सके। आदमी कहता है नहीं कि वेल डन इज हाफ डन, यानी कोई कार्य अच्छी प्रकार से यदि प्रारंभ किया जाता है तो उसका जो फल होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो बीज जब अच्छा रहेगा, आपकी खेत की बुवाई जुताई अच्छी प्रकार से होगी, उसमें अच्छा उर्वरक डालेंगे तो सब आपका उत्पादन अच्छा होगा। तो बीज उसका मेन मुख्य कारक होता है, क्योंकि यदि हम बीज भर बदल देते हैं तो लगभग, और सभी कृषि क्रियाएं समान रूप से चलाते हैं तो लगभग 20% उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखें।
2: ठीक है भगत भैया,
1: बहुत बढ़िया जानकारी दिया भैया, कर ले आप ला और पूरा किसान वाड़ी प्रभाग ला गाड़ा गाड़ा बधाई।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ जुड़े भगत जी।
2: डॉक्टर साहब, हमारे कालर मन जुड़े और मुख्य रूप से जिन फसल हमारे क्षेत्र के है धान, उखर बारे में आनी बानी जानकारी पूछी ना, भी बड़ सुघर ढंग से उमनला अवधि और भूमि के हिसाब से बीज के जानकारी दिया। मुख्य रूप से प्रोटीन पर हम दार के सेवन करथन, राहर के कौन कौन सा बढ़िया किस्म है?
0: हाँ, बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि हमारे यहाँ खरीफ में अरहर की खेती भी अच्छी प्रकार से की जाती है और किसान भाई बड़े रुचि से इसकी खेती करते हैं। तो इसमें जो हमारे विश्वविद्यालय से विकसित हैं उसमें से छत्तीसगढ़ अरहर एक है, जो 165 से 175 दिन में पककर के तैयार हो जाती है।
2: अच्छा।
0: और इससे हमको 20 से 22 क्विंटल पर हेक्टर उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ अरहर दो, ये भी 170 से 180 दिन में पककर के तैयार हो जाती है और 20 से 22 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। और एक बहुत ही अच्छी किस्म है आशा,
2: आशा
0: जो 180 से 190 दिन में पककर तैयार होती है और 18 से 20 क्विंटल इसका उत्पादन होता है। एक किस्म है आपकी जीटी 103, इसी प्रकार से जीटी 104, ये भी किस्में लगभग जो अरहर की किस्में होती हैं वो 170 से 180 दिन में पककर के ही तैयार होती हैं और उनसे लगभग हमको 18 से 20 क्विंटल 20-22 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन्हीं किस्मों का उपयोग करें, और इसके अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं, यदि किसान भाई चाहते हैं तो कृषि महाविद्यालय आकर के या जब आप बीज निगम जाते हैं वहाँ आप चर्चा करके किस्मों को ले सकते हैं।
2: अच्छा, अगर राहर के दलहनी की बात करें तो उड़द भी बढ़िया जिनी से वाला लेते हैं।
0: हाँ, उड़द का क्या है, अपने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा महत्व है,
2: तो खातन
0: है। हाँ, तो इसके लिए हैं कुछ किस्में और ये थोड़ा जल्दी पककर के तैयार हो जाने वाली किस्में हैं, तो ऐसी जमीनों में उगाते हैं जहाँ पर पानी का भराव नहीं होता है और

0: यदि पानी भर भी जाता है तो जहां भी दलहनी फसलें लगाते हैं वहां पर जल निकास करने की व्यवस्था करना चाहिए।
1: हाँ
0: तो इसमें TPU-4 करके एक किस्म है जो 70 से 75 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और इसमें 7 से 9 कुंटल उत्पादन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इंदिरा उड़द प्रथम, जो कि यह भी 70 से 75 दिन में पक कर तैयार होती है, लेकिन इसका उत्पादन 12 से 14 कुंटल प्रति हेक्टर आता है। और RBU-38 बरखा के नाम से जानी जाती है, इसका भी 75 दिन में पककर के तैयार हो जाती है और 12 से 15 कुंटल उत्पादन प्राप्त होता है।
1: दे बहुत सुघर जानकारी उरीद के दिए हाँ आप मन। आखिर म जात जात तिलहनी फसल म हमन ला मूंगफली के किस्म और तिल के फसल के जानकारी दे देवा।
0: बहुत बढ़िया सवाल। मूंगफली भी हमारे किसान भाई बहुत लगाते हैं, काफी क्षेत्र है मूंगफली का। तो मूंगफली के लिए किसान भाई, छत्तीसगढ़ मूंगफली है, ये 110 से 115 दिन में पककर के तैयार हो जाती है। छत्तीसगढ़ ट्रांबे मूंगफली है एक,
1: अच्छा
0: जो कि खरीफ और रबी दोनों के लिए उपयुक्त होती है और 115 दिन में पककर खरीफ में तैयार हो जाती है और रबी में थोड़ा कम समय लगता है, 10 दिन कम समय लगता है, तो 105 दिन में पककर के तैयार होती है
1: तैयार हो जाते
0: और इसका उत्पादन जो होता है वो 13 से 15 कुंटल पर हेक्टर होता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है, हम उन्हीं किस्मों की ज्यादातर यहाँ सिफारिश करते हैं।
1: जी। तिल के आखिर में बता देवा।
0: हाँ, तिल की फसलों में TKG-21 है, 85 से 90 दिन में पककर के तैयार होती है और
1: ठीक
0: उसकी उत्पादन क्षमता जो होती है वो 6, 6.5 से 7 कुंटल होती है
1: प्रति हेक्टेयर।
0: प्रति हेक्टेयर। तो एक TKG सीरीज में बहुत सारी किस्में हैं तो उनको ले सकते हैं और उनका जो उत्पादन है लगभग एक जैसा होता है और पकने की अवधि भी 80 से 82-85 दिन होती है। इसके अलावा एक जवाहर तिल 12 है जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है, लेकिन
1: अच्छा
0: हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका उत्पादन अच्छा होता है। यह मतलब परीक्षण किया गया है, इस
1: अच्छा
0: आधार पर हम इस किस्म को यहाँ पर रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं। इसी के अलावा जवाहर तिल 14 है, ये भी एक अच्छी किस्म है होती है और जो 82 से 85 दिन में पककर के तैयार होती हैं और इनका उत्पादन 700 किलो यानी 7 कुंटल से 7.5 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से
1: हो
0: होता है।
1: जाते हैं। बड़ा सुघर जानकारी दिए है आज आपन। धान के मुख्य रूप से, राहर के, दलहनी फसल के, तिलहनी फसल के मुख्य रूप से जेन हमर छत्तीसगढ़ो खासकर हमर जेन संभाग है बिलासपुर संभागों में किसान भाई मन लेते। किसान मन भी बढ़ चढ़ के फोन करिन, आप मन सो अपन सवाल समस्या जिज्ञासा ला रखिन कि भाई कौन कौन सा बीज ल कतका दिन तक हमन ला लगाना है, जैसे हाइब्रिड है, रिसर्च है। आप बढ़िया सुघर ढंग से उखर जवाब ला दिए है। तो किसान भाई हो, ये रही से सुघर हेलो किसानवाड़ी फोन इन कार्यक्रम। आज के विषय रही से खरीफ फसल के उन्नत किस्म के चयन और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर। आज ये विषय पर जानकारी दिए बर हमारे बीच वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वैज्ञानिक और प्राध्यापक डॉक्टर TD पांडे जी मन उपस्थित रहे हैं। ये हो इस हमारे कार्यक्रम। तो डॉक्टर साहब आप बहुत सुघर सुघर जानकारी दिए आप मल्ला कार्यक्रम में आए बर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी तो भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों की धन्यवाद कि उन लोगों ने हमारी बात सुनी और काफी प्रश्न उत्तरी भी हुई।
1: तो एकरे संग देवा कार्यक्रम में विदा जित्तू भाईला। अगला हफ्ता फिर मिलबो नवा विषय नवा विशेषज्ञ मंसू। तब तक राम राम जय जो
0: राम राम जय जो।
2: सुने किसान भाई हो, हेलो किसान वाणी और विषय से खरीफ फसल के उन्नत किस्म के चयन और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर। विशेषज्ञ डॉक्टर TD पांडे प्राध्यापक सस्य विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर बात करें जीतू भैया मन। और अब सुनिए संदेश ल।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच
0: है? एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: मैंने 2015-16 से ऑल पाम की खेती की है, और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं, और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं, और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पम्प का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
5: ऑयल पम्प का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
6: तो किसान भाई हो, एक संग यदि बेरा हो कि जाके बिलासपुर के तापमान अधिकतम 41.0 डिग्री और न्यूनतम 28.0 डिग्री सेल्सियस। तो विदा दो जीवन भैया किसान माड़ी कार्यक्रम ले। जय जोहार, राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हुए हैं। चलिए अब रुक करते हैं बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा की ओर।

श्रोता बहनों को अदिति का नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें स्वस्थ और बेहद खुशहाल होंगी और इस वक्त गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रही होंगी। और हमारी कुछ बहनें तो मायके में छुट्टियों का आनंद ले रही होंगी और कुछ शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर अपनी मनपसंद जगह पर छुट्टियों का आनंद ले रही होंगी। सच बहनों, बेहद सुकून मिलता है जब हम शहर के कोलाहल से दूर हरे भरे जंगलों, झरनों और कल कल कर बहती नदियों के शांत वातावरण में सैर करने जाते हैं और जब वापस आते हैं तो अपने आप को ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ और तनाव रहित महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी बहनों, हम आज भी अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग नहीं हैं। बहनों, हम इस धरती को, प्रकृति को अपनी माँ कहकर संबोधित करते हैं। यदि धरती हमारी माँ है तो हम महिलाएं उसकी सबसे अधिक संरक्षक है। बहनों, जिस तरह से एक माँ अपने परिवार का पालन पोषण करती है, उसी तरह से हम महिलाएं अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी निभाती है। आज पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। बहनों, इन समस्याओं का समाधान केवल सरकार या संस्थाओं के प्रयासों से नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक महिला की भागीदारी से संभव होगा। बहनों, एक महिला जब अपने बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है ना, तब वह केवल एक आदत नहीं बल्कि बेहतर भविष्य की नींव रखती है। बहनों, कल यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। आइए इस दिन हम संकल्प लें कि प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, एक स्वस्थ धरती छोड़कर जाएंगे। अपनी बातों को यहाँ पर देते हैं विराम और चलते हैं हमारे आज के क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति में। सुनते हैं ये भेंट वार्ता, विषय है हरित जीवन शैली अपनाने में महिलाओं का योगदान। आइए बहनों, मिलते हैं पर्यावरण मित्र हमारी सखी

0: श्रीमती प्रतीक्षा तिवारी जी से।
1: हरियाली का दीप जलाएं, धरती को फिर स्वर्ग बनाएं, नारी शक्ति के संग मिलकर हरित जीवन का पथ अपनाएं। संपूर्ण सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से जनहित में जारी।
0: बहनों, हम महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। सहेजना और संवारना हमें खूब आता है, फिर चाहे वो हमारा घर हो या पर्यावरण। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे घर परिवार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज के हमारे पर्यावरण अभिव्यक्ति क्रम में मिलते हैं पर्यावरण मित्र हमारी सखी श्रीमती प्रतीक्षा तिवारी जी से, जो लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। और हमारी बातचीत का विषय होगा हरित जीवन शैली अपना आने में महिलाओं का योगदान। तो प्रतीक्षा जी, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार अतिथि जी, आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और पूरे आकाशवाणी परिवार का मैं धन्यवाद करती हूँ।
0: प्रतीक्षा जी, हम तो आपसे भली भांति परिचित हैं, लेकिन एक बार फिर से आप हमारी बहनों को अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम प्रतीक्षा तिवारी है और मैं अपनी टीम के साथ में मिलकर पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण पे काम करती हूँ। हम सब मिलकर हर वर्ष 5 जून जो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन हम वृक्षारोपण करते हैं। एक महिलाएं 2 वृक्ष लगाती हैं और उसे हम गोद भी लेते हैं ताकि हम उसे समय पर जल दे सकें। इस तरीके से हम पर्यावरण के लिए अपना जो थोड़ा बहुत योगदान है वो हम हर साल करे हैं। इस काम को करते हुए हम लोग को कई वर्ष हो चुके हैं। हमने बिलासपुर के कई क्षेत्रों में वृक्ष लगाए हैं, जल के ऊपर कार्य किया है, तालाबों का विवाह कराया है। ऐसे हम और हमारी टीम मिलकर ये काम करते आ रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया प्रतीक्षा जी, आप इत काम कर रही हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है प्रतीक्षा जी कि पर्यावरण संरक्षण में आप महिलाओं की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
1: अदिति जी, आपको पता है कि अभी के समय में जो पर्यावरण संरक्षण है ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के रह गया है। हा? इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, आप खुद ही महसूस कर रही होंगी। आते वक्त एक भी आपको वृक्ष नहीं मिला होगा आकाशवाणी के आते वक्त बीच में, तो ये सब की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। और ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, ये सब हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम महिलाओं की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बन जाती हैं। हम महिलाएं क्या करती हैं, घर में छोटी छोटी चीजों से लेकर के पर्यावरण को बचाने का कार्य करती हैं। जैसे कि बिजली का ही ले लो तो हम बिजली बचत करती हैं, पंखा ना चले, ना लाइट कहीं बंद हो, जहाँ पे लोग ना हो वहाँ पे लाइट कट हो, ऐसा ध्यान रखना, बेवजह जल जो है इधर उधर बेकार मत हो, नल खुला मत रहे, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान।
0: हमारे बड़े बुजुर्ग भी पानी का व्यर्थ बहना बहुत बुरा समझते थे
1: जी,
0: और हमें डांट भी पड़ती रहती थी
1: जी। वही सबसे सीख मिली है और आज हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। वृक्ष लगाना, ये इन सबके ऊपर महिलाएं जो है ज्यादा जोर दे रही हैं। आजकल जो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है वो सबको कंट्रोल करने के लिए महिलाएं ही अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। जैसे प्लास्टिक के झोले की जगह पे अब जूट के या कपड़े के झोले लेके जाओ, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक के सामान ना खरीदो, सब्जियों को प्लास्टिक में मत लो। ये सारे जो छोटे छोटे काम है वो महिलाएं ही पहल करती हैं और ये आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिस तरीके से माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, उसी प्रकार से एक महिला ही पेड़ का अच्छे से ख्याल रख सकती
0: बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक्षा जी, आपने बहुत सारी बातें हमें और हमारी बहनों को बताई। ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी पर्यावरण के लिए बड़ा योगदान बन सकती है, क्या आप हमें बताएंगी?
1: जी अदिति जी, बिल्कुल बताऊंगी। जैसे हम महिलाएं हैं, छोटी छोटी आदतों से ही बड़े बड़े बदलाव होते हैं
0: जी।
1: तो हम लोग अपने घर में क्या है बागवानी कर सकते हैं, से अपने घर में ही पौधे लगा सकते हैं, जिससे क्या है ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। घर में हरियाली भी रहेगी तो थोड़ा गर्मी से सुकून भी मिलेगा। हम अपने घर में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, साथ में बिजली की बचत कर सकते हैं। और पर्यावरण और इन्वायरमेंट में हमारा सूर्य जी तो है ही जो हमें बिजली देने के लिए है, जिसके लिए हम सौर पैनल का यूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर आते हैं जिससे हम खाना भी बना सकते हैं। अपने घर में सौर पैनल लगाने से क्या है कि बिजली की बचत होगी और उसके साथ साथ बिजली का जो बिल अब बहुत ज्यादा आने लग गया है उसकी बचत होगी, तो हमारा पैसे भी बचेंगे। तो एक तो पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है और हम इकोनॉमिक ठीक भी हो रहे हैं। हैं, बैलेंस भी हो रहे हैं। ये छोटी सी पहल के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी भी देती है
0: जी।
1: तो हम उसे अपने घर में आसानी से

0: ये गवर्नमेंट की सहायता से कम पैसे में लगवा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं और पर्यावरण में सहयोग भी दे सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अदिति जी प्लास्टिक का यूज कम से कम करके हम एक छोटा सा जो बदलाव है कि जैसे कोई हमको धनिया दे रहा है पॉलिथीन में
1: हाँ.
0: और हमारे पास अगर झोला है तो हम उसे बोले कि पॉलिथीन मत दो, हम झोले में ही ले लेंगे।
1: जी
0: जैसे कहीं पे प्लास्टिक की बॉटल का यूज हो रहा है वो यूज ना करके हम स्टील की बॉटल ले लें। ऐसा जो छोटा छोटा प्लास्टिक को लेकर जो हम अपने दिनचर्या में यूज करते हैं उनको हम रोक सकते हैं।
1: प्रतीक्षा जी, घर में आए दिन पूजा होती है
0: जी जी
1: या
0: जी
1: जन्मदिन का हम कार्यक्रम करते हैं, है ना, तो उसमें भी मैंने देखा है कि पूजा या कोई भी कार्यक्रम के बाद डिस्पोजेबल का एक बड़ा सा ढेर, जिसको निपटाने की एक बड़ी समस्या होती है, तो उसके लिए भी हम बर्तनों का इस्तेमाल कर डिस्पोजेबल से मुक्त कर सकते हैं हम इस पर्यावरण को,
0: जी बिल्कुल
1: या तो इको फ्रेंडली जो आजकल कुछ आ
0: जी
1: रहे
0: जी
1: हैं
0: रिसाइकल प्लास्टिक्स भी आती
1: हाँ
0: हैं
1: उनका
0: जिनका
1: इस्तेमाल
0: यूज
1: कर सकते
0: जी
1: हैं.
0: जी और इसके साथ साथ अदिति जी हमारे यहाँ जो कचरा रहता है, जो
1: जी
0: घरेलू कचरा निकलता है, एक गीला कचरा सूखा कचरा, ये जो अलग अलग करना, ये हमारी जो गवर्नमेंट भी इसकी पहल करी है कि आप गीला कचरा अलग करो सूखा कचरा अलग करो के ऊपर भी हम थोड़ा सा ध्यान दे दें। और इन कचरे को अब अगर हम अलग अलग कर दें तो इससे भी पर्यावरण के लिए सहायता होगा, क्योंकि जो गीला कचरा है वो जाएगा जैविक खाद बनने के लिए
1: जी
0: और
1: जी
0: सूखा कचरा है वो रिसाइकल हो जाएगा, तो उससे क्या है प्रदूषित नहीं होगा हमारा वातावरण।
1: प्रतीक्षा जी, घर अगर हम सोचे घर पर ही बागवानी या किचन गार्डन करने की, तो उससे हमें क्या फायदे होंगे?
0: अदिति जी आप सब्जी लेने जाती होंगी, आप महिलाएं खाना भी बनाती होंगी, तो आपको
1: हाँ
0: अच्छे से पता है कि हमें जो ताजी सब्जियां हैं ना वो नहीं मिल पाती जल्दी से। अगर आप जा रहे हो आपको पता है कि हाँ ये गांव से ला रहे हैं तब हम लेंगे कि हाँ ताजी सब्जियां होंगी। तो ये सब जो छोटी छोटी जरूरत की चीजें हैं ये हम अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह बड़ा है तो आप ज्यादा सब्जी उगा सकते हैं, जगह छोटी है तो धनिया मिर्ची पुदीना ये सब तो आप लगा ही
1: आम
0: सकते
1: जिंदगी में
0: हैं।
1: हमें जरूरत पड़ती
0: जी
1: ही
0: जी
1: रहती
0: जब
1: है
0: भी
1: ना.
0: आप जरूरत है आप लीजिए रासायनिक खाद की जगह, जो अपना घर में हम चावल धो रहे हैं दाल धो रहे हैं ये सब का पानी जो है हम उन पे पौधों पे डाल दें तो वो जैविक खाद का काम करेगी। जैसे प्याज के छिलके आलू के छिलके हैं ये सबको जो है ना डीकम्पोस्ट करके हम जैविक खाद बना सकते हैं
1: बिल्कुल
0: जो हम अपने बागवानी में यूज कर सकते हैं। बागवानी करना उसमें फिर पौधे लगाना हर शाम को उनको समय देना, इनसे क्या होता है ना कि महिलाओं का जो जीवन है वो सेम डेली रूटीन से एक स्ट्रेस हो जाता है, तो वो स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए बागवानी बहुत अच्छी चीज है। अगर हम उस पे देंगे तो स्ट्रेस रिलीफ होगा, मानसिक शांति भी मिलती है। तो बागवानी किचन गार्डनिंग ये अपने फायदे के साथ साथ में जो घर में फल सब्जी हम जो खरीद के ला रहे हैं उनके पैसे भी बचत होंगे और एक तो हम अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छी सब्जियां खाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
1: बहुत बढ़िया प्रतीक्षा जी. अब ये बताइए कि आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए हम महिलाओं की भागीदारी को और कैसे मजबूत कर सकते हैं हम?
0: आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले तो शिक्षण भी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हमको पता होना चाहिए कि इस एक वृक्ष की मूल्य कितनी है हमारे
1: बिल्कुल
0: जीवन में, एक पौधा हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि आज हम अगर जीवित हैं अगर हम श्वास ले रहे हैं तो पौधे की वजह से है, वो ऑक्सीजन ना देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शिक्षण है वो सभी लोगों को होना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। हर बरसात में कम से कम आप अपनी तरफ से 5 पौधे लगा सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कम कर लीजिए। जब महिला जो है हरित आदतों को अपनाती है तो वो घर को नहीं बल्कि पूरे विश्व को पूरे देश को हरियाली बना देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक्षा जी, घर में हम बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें पर्यावरण संरक्षण के लिए, या हम उनको कैसे प्रकृति से जोड़ें, ये बताइए.
0: जी अदिति जी माँ तो बच्चों की सबसे पहली शिक्षिका होती
1: हाँ.
0: है, अगर माँ सिखाएगी तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। बच्चे जैसे छोटे हैं तो माता उनको सिखा सकती हैं कि ये जो जल है इसको बेकार नहीं करना है, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो नल बंद कर दो, अगर तुम कमरे से बाहर जा रहे हो तो लाइट पंखा ये सब बंद होना चाहिए जिससे बिजली की खपत होगी जो हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। और साथ में बच्चों को जैसे किचन गार्डनिंग का ही मैंने आपको बताया तो हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो साथ में अपने छोटे बच्चे जो हैं उनको भी रखें, उनको भी करवाएं, तो उनको क्या क्या है, लगाव हो जाएगा पौधे से, को एक आदत बनती जाएगी और उनकी यही आदत आगे चल के जो पर्यावरण के लिए क्या होगा, उनको लगाव होने लगेगा और वो उसके महत्व को समझेंगे। तो जब बच्चा छोटा है तभी आप उनको सिखा सकती हैं कि पर्यावरण कितना जरूरी है, वृक्ष कितना जरूरी है। महिलाएं जो होती है ना अदिति जी, वो पर्यावरण के जो अनुकूल व्यवहार है ना, उसको वो

0: कहानियों पर अपनाती है और बच्चों के लिए वो आदर्श बन जाती है कि एक बच्चा अपनी माँ को देखेगा कि वो पेड़ के लिए कितनी ज्यादा कॉन्शियस है कि हाँ ये वृक्ष है, ये हमें ऑक्सीजन देता है, तो उसको बच्चा देख देख करके सीखेगा। महिला जो होती है वो अपने संस्कार, शिक्षा और व्यवहार के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण के लिए जो प्रेम और जिम्मेदारी और जागरूकता जो है ना वो विकसित करती है, और ये बहुत बड़ी भूमिका होती है एक माता को बच्चों के लिए और अपने देश के लिए, पृथ्वी के लिए।
1: बहुत बढ़िया प्रतीक्षा जी, ये आदतें हम घर से ही बच्चों में विकसित कर सकते हैं। हम अपने घर को ही साफ न रखें बल्कि अपने घर के आसपास के वातावरण को भी साफ रखें,
0: जी जी।
1: है ना। बच्चे यदि घर में यहाँ वहाँ कचरा फेंके तो हम उन्हें बराबर टोक कर सिखाए कचरा हमें डस्टबिन में ही डालना है, तो वो बाहर में भी बच्चे कचरे को डस्टबिन में ही डालेंगे। और घर के साथ साथ हमें घर के आसपास भी सफाई रखनी है, वहाँ घर के आसपास आम, पीपल, ऐसे
0: छोटे छोटे पेड़,
1: हाँ, वृक्षारोपण करवाएं और उनकी देखभाल करें। भविष्य में चलकर वो बड़े घने वृक्ष बनेंगे और हमको छाया देंगी,
0: हमको ऑक्सीजन देंगी। जो ये बारिशें और ये गर्मी आजकल देख रहे हैं आप, टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं कि टेम्परेचर इतना बढ़ गया, अगले साल और बढ़ेगा। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए अगर हम आज अपना हाथ ना उठाएं, हम अगर वृक्ष ना लगाएं तो ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता है। तो ये जो छोटी छोटी हमारी आदतें हैं वृक्ष लगाना, ये सब जो है ना आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है आगे के लोगों के लिए। हम अपना ना सोचकर बाकी लोगों का भी सोचें, देश का भी सोचें, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: अब अपने घरों के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रतीक्षा जी, आप हमारी बहनों के कार्यक्रम में आई हैं, तो आप हमारी बहनों के लिए एक छोटा सा संदेश दें।
0: जी अदिति जी, मैं यहाँ पे खुद महिला हूँ और हमारी जितनी भी श्रोताएं हैं, महिलाएं हैं, पुरुष भी और महिला भी, खास करके तो महिलाओं को ही बोलूंगी, क्योंकि वो अगर कहते हैं ना कि महिला शिक्षित होती है तो अपने साथ साथ परिवार को ही शिक्षित करती है, और अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो स्वयं शिक्षित रहता है। तो महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर महिलाएं अपना कदम नहीं उठाएंगी तो पर्यावरण में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जैसे एक माँ देखभाल कर पाएगी वो तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, वृक्षारोपण नहीं कर रही है, तो ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, ये हमारा खुद का काम है, क्योंकि गर्मी हमें भी लग रही है। तो हम खुद आगे आकर के पेड़ लगाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, हम उन पेड़ों को गोद ले लें ताकि हमको एक जिम्मेदारी बनी रहे, ताकि समय पर जाकर जल डालना है, हमें देखना है कि वो पेड़ सही से है या नहीं है। तो महिलाओं को ही आगे आकर ये काम करना पड़ेगा। पर्यावरण दिवस पे वृक्ष लगाइए, बरसात आ गई तो आप अपने तरफ से 5 वृक्ष जरूर लगाइए, सब भी छने मिल करके, और हमारी इस धरती की जो ये गर्मी है उसे शांत करने में मदद दें, क्योंकि आगे चलकर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी तो हम 45-46 डिग्री में ही बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आगे चलकर जब 50 क्रॉस होगा तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी और समस्याएं हो जाएंगी। तो मैं महिलाओं को यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी सामने आइए और अपनी तरफ से 5-5 वृक्ष लगाइए, ना वीडियो के लिए, ना फोटोज के लिए, कुछ के लिए नहीं, खुद के लिए एक बार अपना ये काम करके देखिए। धन्यवाद
1: प्रतीक्षा जी, आप हमारे स्टूडियो पे आई और हमसे और हमारी बहनों से इतनी सारी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू अदिति जी, धन्यवाद आकाशवाणी। हरियाली का दीप जलाएं, धरती को फिर स्वर्ग बनाएं, नारी शक्ति के संग मिलकर हरित जीवन का पथ अपनाएं। संपूर्ण सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से जनहित में जारी।
1: हम उम्मीद करते हैं बहनों कि ये भेंट वार्ता आपको जरूर पसंद आई होगी और प्रतीक्षा जी की बताई बातों पे आप अमल भी करेंगी। और आइए बहनों, अब चलते हैं हम गीत संगीत की दुनिया में इस गीत के साथ। गीत लिया हमने फिल्म एक नज़र से, इस गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और एक छोटी सी सूचना बहनों आपके लिए कि अब आप हमारे कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के गीतों को भी सुन सकती हैं, और उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है patra email bsp@gmail.com। तो बहनों, हमें अपने फरमाइश इसी पते पर लिख भेजिए।

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: श्रोताओं, अब आपको एक जरूरी सूचना दे दें। मैनो स्वास्थ्य वार्ता का प्रसारण महीने के दूसरे मंगलवार से होता है। इस माह इसका प्रसारण 9 जून मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्डिंग इस

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, अब आपको एक जरूरी सूचना दे दें। मानव स्वास्थ्य वार्ता का प्रसारण महीने के दूसरे मंगलवार से होता है। इस माह इसका प्रसारण 9 जून मंगलवार को शाम 5:35 पे किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी, जो फोन पर आधारित हमारा कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी नेचुरोपैथी और योग की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल जी, और आपसे चर्चा का विषय होगा महिलाओं के स्वास्थ्य में योग की भूमिका। फोन करने के लिए हमारे नंबर हैं 07752310026। बहनों, फोन नंबर एक बार फिर से नोट करें, 07752310026, और हमारा दूसरा नंबर है 266592। तो बहनों, फोन कीजिए हमें इस नंबर पे और जानिए आपसे स्वास्थ्य से समस्याओं से जुड़े समस्याओं का हल। और बहनों, फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे चलते हैं अगले क्रम की ओर। बहनों, एक स्वस्थ और व्यवस्थित जीवन की शुरुआत सुरक्षित भोजन से होती है, और इसी संदेश को लेकर हर साल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए इस विषय पर सुनते हैं डाइटिशियन श्रीमती रितु साहू जी के विचार।
2: नमस्कार माताओं और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन में सीधा जुड़ा हुआ है। हम सभी रोज खाना खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं, बच्चों के टिफिन तैयार करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वह कितना सुरक्षित है? दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही धन। यदि हमारा भोजन सुरक्षित होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और हम बेहतर जीवन जी पाएंगे। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना। खाद्य सुरक्षा आखिर है क्या? खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि ऐसा भोजन प्राप्त करना है जो सुरक्षित, पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। कई बार क्या होता है, भोजन देखने में तो बिल्कुल साफ और ताजा लगता है, लेकिन इसमें मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या अन्य हानिकारक तत्व हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूषित भोजन के कारण दस्त, उल्टी, पेट दर्द, फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और कई गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में यह खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान भोजन जल्दी खराब होता है और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसे में सबसे अधिक जोखिम छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को होता है। दोस्तों, आज खाद्य सुरक्षा का मतलब केवल गंदगी या संक्रमण से बचना ही नहीं है, हमें यह भी समझना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और वह हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है। आजकल हमारी थाली में ताजे भोजन की जगह धीरे धीरे पैक्ड फूड, इंस्टेंट फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट और अनप्रोसेस्ड फूड बढ़ते जा रहे हैं। इसमें स्वाद बढ़ाने, रंग आकर्षक बनाने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कई बार प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स आदि का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये पदार्थ निर्धारित मात्रा में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसे खाद्य पदार्थ हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाते हैं तब यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि आज कम उम्र में मोटापा, डायबिटीज, फैटी लिवर, पाचन संबंधी समस्याएं और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एक डाइटिशियन के रूप में मैं हमेशा कहती हूँ, जितना भोजन प्रकृति के करीब होगा उतना ही वह स्वास्थ्य के करीब होगा। सुरक्षित भोजन के लिए कुछ आसान आदतें हम अपना सकते हैं। खाना बनाने और खाने से पहले हमेशा हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। फल और सब्जियों को उपयोग करने से पहले 3-4 बार पानी से अच्छी तरह धोएं। कच्चे और पके भोजन

0: को हमेशा अलग अलग रखें। बचे हुए भोजन को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर ना छोड़ें। हमेशा स्वच्छ पानी का उपयोग करें। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, FSSAI नंबर और इंग्रेडिएंट लिस्ट अवश्य पढ़ें। और माता पिता से तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि बच्चों को बचपन से ही अच्छी खान पान की आदत सिखाएं, उन्हें ताजा घर का बना भोजन, मौसमी फल और पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। प्रिय श्रोताओं, खाद्य सुरक्षा केवल एक दिन मनाने का विषय नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। जब हम सुरक्षित भोजन चुनते हैं तो हम केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखने का कार्य कर रहे होते हैं। याद रखिए, कई बार बीमारी दवा की कमी से नहीं बल्कि खाने में की हुई छोटी सी लापरवाही से शुरू होती है। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस पर आइए हम सभी एक छोटा सा संकल्प लें। हम स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को अपनाएंगे, खाद्य लेबल पढ़ेंगे, अनावश्यक जंक और अत्यधिक प्रोसेस फूड का सेवन कम करेंगे तथा अपने परिवार को भी जागरूक करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य की शुरुआत अस्पताल से नहीं, हमारी रसोई और हमारी थाली से होती है। इसी संदेश के साथ मैं डाइटिशियन रितु आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित भोजन को अपनी आदत बनाइए। नमस्कार।
1: तो बहनों, आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अदिति को अनुमति दें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। साथियों, आज संध्या 6:20 पर और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। और केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में आज संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे एक विशेष श्रृंखला के तहत एक विशेष कार्यक्रम जिसका विषय होगा स्वास्थ्य सेवा। इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके पश्चात संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। रात्रि 8 बजे का समय होगा साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिली का। और रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। ये तो थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए अब हम आपको कल सुबह और शाम के आकर्षणों के विषय में बतला दें। कल सुबह 8:30 पर रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। 10 बजे का समय होगा गूंजे स्वर गांव के इस कार्यक्रम का, जिसमें कल आप सुनेंगे पंडवानी गायन। प्रसंग होगा पांडव का वनवास जाना। इस क्रम के तहत कलाकार होंगे रामचरण नेटी और साथी। इसी कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे चंदैनी गायन, प्रस्तुत करेंगे रामाधार साहू और साथी। आपकी पसंद कार्यक्रम का समय होगा कल सुबह 10:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण किया जाएगा कल सुबह 11 बजे। शाम के कार्यक्रमों में सबसे पहले 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 का समय होगा ग्राम सभा कार्यक्रम का, जिसमें फोन इन कार्यक्रम के तहत श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर TD पांडे। बातचीत का विषय होगा बीज एवं पौध उपचार का महत्व। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे महंगू भैया। इसके पश्चात 5:05

35 मिनट पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा जगत, जिसमें विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रित आज की बात क्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पर्यावरण हमारा दायित्व इस विषय पर चर्चा। आगे इसी कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित बातचीत का आप लेंगे आनंद। संध्या 6:20 और 7 बजे ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम का आप लेंगे आनंद। और कल संध्या 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सुनेंगे एक विशेष श्रृंखला, जिसमें कल का विषय होगा महिला सशक्तिकरण। ये कार्यक्रम दिल्ली से रिले किया जाएगा। 7:45 पर चित्रपट संगीत आप सुनेंगे। और कल रात्रि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी, जिसमें पूर्व उद्घोषक हरीश चंद्र वाधिकार से बातचीत करेंगी संज्ञा टंडन। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी और प्रस्तुति सहयोग रिकॉर्डिंग और संपादन संज्ञा टंडन का होगा। रात्रि 8:20 पर आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

हरियाली का दीप जलाएं, धरती को फिर स्वर्ग बनाएं, नारी शक्ति के संग मिलकर हरित जीवन का पथ अपनाएं। संपूर्ण सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से जनहित में जारी।

0: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। नगरीय निकाय चुनाई में अध्यक्ष 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करिस। शासन स्तर में हुए सकारात्मक चर्चा होए के बाद तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। केरलम पहुंचे के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15 ले 20 दिन के बेरा लाग थे। अब समाचार विस्तार ले। नगरीय निकाय के आम और उपचुनाव मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ले मिले जानकारी के अनुसार नगरीय निकाय में अध्यक्ष के 5 मले 3 पद में भाजपा और 2 पद में कांग्रेस जीत हासिल करीस। उन्हें पार्षद के 71 पद मले 39 में भाजपा और 30 में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतीन है। 2 पद में निर्दलीय प्रत्याशी मन जीत हासिल करे है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर मतगणना मतदान के दिन ही हो गए रहीस। आज सारिणीकरण करेगीस और जीते हुए प्रत्याशी मनला प्रमाण पत्र जारी करेगीस। बताइन है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय मन के आम और उपचुनाव पर 1 जून के मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा हुए में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के जनता कोती ले श्री मोदी ला बधाई और शुभकामना दिन। उमन कहिन के ए 12 बच्छर में देश ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करे है। संग्रह विकास सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नवा आयाम स्थापित करे है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह आज नई दिल्ली में देश भर के 42 उत्कृष्ट पंचायत मनला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करीन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के सरदेह ग्राम पंचायत ला स्वच्छ और हरित पंचायत के पुरस्कार प्रदान करेगीस। तहसीलदार मन अपन हड़ताल स्थगित कर दे है। शासन स्तर में हुए आरोपी मन के खिलाफ एफआईआर और वैधानिक कार्रवाई शुरू होए के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ सामूहिक अवकाश स्थगित करे के निर्णय ले है। संघ स्पष्ट करे है कि प्रदेश भर के तहसीलदार नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज काम में लहूट गिन है। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे बताएं कि 2 नामजद आरोपी मन के थाना में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करे के निर्णय लेगी। बता दें कि सरगुजा के

0: उपलब्ध कराए जाए। रासायनिक उर्वरक के उपलब्धता और वितरण व्यवस्था के समीक्षा करत श्री कश्यप जम्मू सहकारी समिति के गोदाम में जरूरी उर्वरक मन के पर्याप्त सुनिश्चित करे बर कहिन। श्री कश्यप किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी योजना के विस्तार में जोर देवत जम्मू जिला में विशेष शिविर आयोजित करे के निर्देश दिन। प्रदेश में किसान मन के आय बढ़ाए और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले राज्य सरकार बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करे के निर्णय ले है। मंत्री रामविचार नेताम के अध्यक्षता में नवा रायपुर में ए विषय उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। बैठक में श्री नेताम कहिन कि राज्य सरकार किसान मन के आय दोगुना करे के लक्ष्य के संग बासमती धान के खेती ला प्रोत्साहित करही। ओमन अधिकारी मल्ला ए दिशा में गंभीरता ले काम करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। विश्व पर्यावरण दिवस के मौका में काली 5 जून के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहाल ले रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम में आयोजित एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो ही, उन्हें वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि हो ही। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे बताइन कि ए मौका में मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान के शुभारंभ करही। उन्हें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहाले विश्व पर्यावरण दिवस में काली रायपुर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री OP चौधरी शामिल होंगी। कार्यक्रम के शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षक मन के प्रशिक्षण सत्र ले होगी। छत्तीसगढ़ के 5 नवा शासकीय मेडिकल कॉलेज में 149 पद मन ऊपर संविदा भर्ती करे जाही। चिकित्सा शिक्षा विभाग दंतेवाड़ा मनेन्द्रगढ़ कुनकुरी जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेज पर प्राध्यापक सह प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पद में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करे है। आवेदन के आखिरी तारीख 15 निर्धारित करे गए है। विभाग के अनुसार पात्र अभ्यर्थी चयन दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार में करे जाही। इच्छुक उम्मीदवार विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दुर्ग जिला में इबोला वायरस ल लेके स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गए है। कांगो इथियोपिया और युगांडा ले लहुटे 3 लोगन मनला इबोला वायरस के संदिग्ध मान के ओमन के निगरानी करे जाते। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह घलो एकर पुष्टि करत बताइन कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP ले सूचना मिले के बाद स्वास्थ्य संबंधित लोकन मल्ला पहचान के ओमल्ला होम आइसोलेशन में राखे के निर्देश दे है। बता दन कि केंद्र सरकार इथियोपिया और युगांडा ले आए 2 मनखे मन के आने आने एयरपोर्ट के जरिया सीधा दुर्ग पहुंचे के जानकारी दे रही, जबकि कांगो ले लौटे 1 मनखे पहली मुंबई में रुकिस और बाद दुर्ग पहुंचिस। प्रदेश में इबोला वायरस ले जुड़े संदिग्ध मन के ये पहली मामला आगू आए के सेती स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरतत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनैया पंजीकृत श्रमिक परिवार मन के मेधावी लयिका मल्ला सम्मान। योजना के तहत हरेक मेधावी छात्र ल 1,00,000 रूपया के प्रोत्साहन राशि दे जाही। एकरे संग दुपहिया गाड़ी खरीदे पर 1,00,000 रूपया के विशेष अनुदान दे के घलो प्रावधान है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गए है। मौसम विभाग एकर पुष्टि करत बताइस कि मानसून 3 दिन के देरी ले केरलम पहुंचे है। मानसून के 1 जून के केरलम पहुंचे के संभावना रहीस। केरलम के बाद मानसून ला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे में 15-20 दिन के बेरा लाग थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि खरीफ सीजन पर खातू और बीजा के पर्याप्त करेगे है और काला बाजार

0: રોકે પર નિગરાની રાખી જાતે રાયપુરમાં દૂરદર્શન ડહાલે આયોજિત મુખ્યમંત્રી કિસાન સંવાદ કાર્યક્રમમાં ઓમન પ્રદેશ કે આને આને જિલ્લા લે આયે કિસાન મલ્લે ચર્ચા કરકે તે કિસાનીમાં નવા તકનીક આગ્રહ કરીન મુખ્યમંત્રીએ કહીન કે રાજ્ય સરકાર ડ્રોન તકનીક નેનો ઉર્વરક જૈવિક ખેતી ઔ ફસલ વિવિધીકરણ લા બઢાવા દે કે કૃષિ લા જ્યાદા ફાયદામંદ ઔ ટિકાઉ બનાય બર કામ કરત હે શ્રી સાહે કહીન કે ખેતી કેવલ આજીવિકે કે સાધન નહીં બલ્કિ હમર સંસ્કૃતિ ઔ પહેચાન કે આધાર હે આખિરમાં પ્રમુખ સમાચાર એક ઘો ફેર નગરીય નિકાય ચુનાવમાં અધ્યક્ષ કે 5 મલે 3 પદમાં ભાજપા ઔ 2 પદમાં કોંગ્રેસ જીત હાસિલ કરીશ શાસન સ્તરમાં હોય સકારાત્મક ચર્ચા હોય તહેસીલદાર મન અપન હડતાલ સ્થગિત કર દે હે ઔ પશ્ચિમ માનસૂન આજ કેરલમ પહોંચ ગયે હે કેરલમ પહોંચે કે બાદ માનસૂન લા છત્તીસગઢ તક પહોંચેમાં 15-20 દિન કે બેરા લાગથે એખરે સંગ છત્તીસગઢ સમાચાર બુલેટિન ઇહે સિરાવત હે જય જોહાર
1: श्रोताओं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का पहला नगमा हम आपकी नजर कर रहे हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में प्यार तूने क्या किया इस फिल्म से। संदीप चौटा के लिखे बोल हैं और नितिन रायकूर का संगीत। और पसंद ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की हम तक पहुंची हैं उनके नाम हैं जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक अलौकिक, राजकोट से जूली जगदीश प्राची प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो एलिजा और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष डब्लू और बब्बू, जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका गाव्या सुच्चा सिंह पाठक, दूराबांधा माटापारा से प्रमोद साहू देव नवीन युवराज, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद अलका, पठेना पाटन से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल यश प्रयाण शिवम रेखा और धनेश्वरी वर्मा, राजस्थान से ही लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित खुशी, बिलाई से अशोक श्याम कंवर आसमा श्याम कंवर, गंडई से जागेश्वर देवांगन कचरी बाई दीपक जयश्री ऋषभ रिचा, सहारनपुर से सैयद मसरूर साइना हसन नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अल्तमश खत्री मोहम्मद अलकम्मा खत्री रमेश गौड़ मोहम्मद शादाब खत्री, लुथरा खमरिया से अकरम अमीन अर्श आतिका, लोंगड़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल दलजीत सिंह राजदीप गुरनूर गुरलाल अविराज, रिंगनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, नवागर कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन अपार, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, तिवरता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मोहन सिंह सहोदरी बाई मनमोहन सिंह गिरजाबाई मरकाम चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी, दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक शौर्य और समर्थ नामदेव, बुड़गैन से रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकांता शशिकांता प्रजापति, कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद। और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है हमारे इन साथियों ने भी। महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश, मोहाली चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल जयवीर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज साहिल बिट्टा बजाज, अमगढ़ चौकी से रिजवान खान आयशा सबिया अनस रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश राजदीप राशि शीतल, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू सुजाता

शशांक, सीमा साहू, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और इनका पूरा कुटुंब, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, मोहम्मद मोदी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जल ताज, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित राय, हैप्पी राय। इसी गीत की मिली जुली फरमाइश लिख भेजी है महाराष्ट्र से पीएस निर्मला विशाल, सोंगा से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हियांश कुमार चंदन ने भी। श्रीरामपुर से हमारे साथी हैं अशोक दले, सविता अनिकेत, रोनी, ऋषिकेश, जीविका। कवर्धा से अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार साहू, माफ कीजिएगा, लीलेश्वर साहू, खुशांत और निशांत साहू। रोहासी से इसी गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए पहुंची है मुकेश कुमार साहू की, नंदनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू की। पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदी लहरे। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से हमारे साथी हैं राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा। यवतमाल से सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी। दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, कृतिका बानू। पाकुड़ झारखंड से मेल मिला है उत्तर कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद का। जफाराबाद से सुधाकर राजे, जाधव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, देशमुख का। और दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य और मेघा मस्कीन ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार तूने क्या किया, इस फिल्म का गीत।

श्रोताओं ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में लीजिए पेश है चित्रा की आवाज में अरमान फिल्म का गीत। जावेद अख्तर की रचना, शंकर एहसान लॉय का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका अनिष्का तन्मय गजभैये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी राहुल विनित सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी फातिमा सुरीत रमेश, और रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा सुलोचना चेतन भगत, राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ चंद्रकला रिवाड़, दिल्ली शहर से आसमा परवीन आमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन साइमा नवाज हसन नवाज अहद मृफा नवाज और चाहत, बिलासपुर से हमारे साथी हैं छन्नूलाल शिवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता रजन साहू हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू आकाश कमलेश कन्नूलाल रजक मुरली, सावतपुर से ऋषि सेन रितेश कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नास फातिमा नसरीन अंसारी आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से संदीप और तेलंगाना से मोहम्मद बुराहुद्दीन, महाराष्ट्र से संतोष सुनैना सुकन्या सविता, नागपुर से वैशाली टुक टुक प्रिंस एकांश सुमित ध्वनि, जालंधर से मीना कौर मन्नत और यवतमाल से पंजाब रामटके यशोधरा श्रव्या रामटके, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल मोतीलाल यादव सियाराम चुवाराम वर्मा सूरज पारेकर नारायण यदु और भुवन कामरी, अवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू वीणा नेहा मोनिशा, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर

और मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है पंजाब से मिंटू थॉमस लवली पिंकी आरती अरोड़ा ने। नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा। हिसार से राजकुमार प्रमोद पुष्पेंद्र और सीतामणि। बिहार से मसरत जहानाज तलहत फरहत रिफत नुजहत साहिजा और शाहीन नाजिया नूरी नाज और साजिया शाहीन नाज। इन लोगों ने इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए पेश है चित्रा की आवाज़ में अरमान फिल्म का गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में मुझसे शादी करोगी फिल्म का गीत। समीर के लिखे बोल हैं, अनु मलिक का है संगीत, और ईमेल के जरिए जिन श्रोताओं की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं। हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी, नंदा हनुमान उत्तम, बठिंडा पंजाब से परमेन सिंह, मनजीत, करणवीर, तपिंदर।

परिंदर कुलदीप, एकम दमन अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल जगदीश, और राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल, उमा गुप्ता, राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल, उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, अडार नांदघाट से माकन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति, ख्याति, सरगुजा मैनपाट से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्री देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला, राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, लोखेनाल वर्मा, महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल, यशस्वी, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम, पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी। इन सभी की पसंद पर लीजिए पेश है मुझसे शादी करोगी, इस फिल्म का गीत सुखविंदर और सुनिधि की आवाज़ में।

0: ये था ईमेल करें गीत सुने इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, और इस गीत के साथ ही इस कार्यक्रम का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। 7 बजे हम दूसरे भाग के साथ फिर से उपस्थित होंगे, लेकिन इस वक्त घड़ी की सुइयां संध्या के 6:45 की ओर इशारा कर रही है, और ये वक्त होता है प्रादेशिक समाचार सुनने का। तो चलिए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: आकाशवाणी रायपुर केंद्र है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, माना जब प्रधानमंत्री
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देख हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों, सिर्फ शहर में? अरे गांव में महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ

0: রাহুল সিনহা। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। निकाय चुनाव के तहत मतगणना के आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायत आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय आम और उपचुनाव के लिए आज मतगणना हुई। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 पदों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। वहीं पार्षद के 71 पदों में से 39 पर भाजपा और 30 पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतगणना मतदान के दिन ही हो गई थी। आज सारणीकरण किया गया और विजयी प्रत्याशियों प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के आम तथा उपचुनाव के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में देशभर के 42 उत्कृष्ट पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की सर्दी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत का प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने पुरस्कार विजेता पंचायतों से कहा कि वे सर्वोत्तम तौर को साझा करें, नवाचार को बढ़ावा देकर महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करके और सिरे तक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से श्री मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण के क्षेत्र में आयाम स्थापित किए हैं।
1: ऐतिहासिक काम हुए, उनका पहला 5 साल गरीब कल्याण के काम हुए हैं और दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं। जम्मू से धारा 300 ए हटा है, आपका अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर 5 वर्षों के संघर्ष के बाद वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक बिल पास है। तो ऐसे काम जो असंभव से दिखते थे, माननीय दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सब पूरे हुए हैं।
0: तहसीलदारों ने अपनी हड़ताल स्थगित कर शासन स्तर पर हुई सकारात्मक चर्चा। आरोपियों के खिलाफ FIR और वैधानिक कार्रवाई शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश स्थगित करने का फैसला लिया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आज से नियमित कार्य पर लौट गए हैं। संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि 2 नामजद आरोपियों के थाने में समर्पण के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
2: इस बात को लेकर चर्चा हुई थी तो जल्दी कार्रवाई कराना कराएंगे। गिरफ्तारी होने पर हम अपने आंदोलन समाप्त कर देंगे। तो अभी हमारे आंदोलन जो है पूरी गिरफ्तारी नहीं होगी, स्थगित किया गया है 15 दिन के लिए। और यदि पुनः बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो 15 दिन बाद भी ये आंदोलन फिर से चालू किया जा सकता है।
0: गौरतलब है कि सरगुजा के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट और की कार्य में बाधा डालने के मामले में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट शासनिक विरोध जताते हुए 1 जून से सामूहिक अवकाश पर थे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के लिखमपुरा गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत कर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। श्री साय भीखमपुरा गांव के पास स्थित सपेरा बस्ती भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैक्षणिक 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। योजना के तहत प्रत्येक मेधावी छात्र 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। छत्तीसगढ़

0: के 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में से 149 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कबीरधाम मेडिकल कॉलेजों के लिए प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडे ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री और वन मंत्री एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। श्री पांडे ने प्रदेशवासियों से पौधरोपण करने की अपील की।
1: कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्मृति वन में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें लोग आएंगे। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाहे वाटर बॉडीज हों, वेटलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जंगलों की सुरक्षा का काम है, इको रेस्टोरेशन का काम हो रहा है और ये पूरा प्रयास चल रहा है कि वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण कार्य जंगलों में जो हम कर रहे हैं उससे जो जल स्तर बढ़ रहा है, सारे प्रयास इस तरीके से हो रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हो और ज्यादा से ज्यादा इस दिशा में नवाचार के कार्य हो सकें।
0: वहीं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर कल रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ पोस्टर प्रतियोगिता और इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र से होगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल गौरेला, पिंडरा, मारवाही और जांजगीर चांपा जिले की सभी ग्राम पंचायत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल कल लोक भवन और नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोक भवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। दुर्ग जिले में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य प्रशासन सतर्क हो गया है। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से लौटे 3 लोगों को इबोला वायरस का संदिग्ध मानकर उनकी निगरानी की जा रही है। तीनों यात्रियों को होम आइसोलेशन में 21 दिनों के लिए रखा गया है। वर्तमान में तीनों यात्री पूर्णतः स्वस्थ हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इथियोपिया और युगांडा से आए 2 व्यक्तियों के अलग अलग एयरपोर्ट के जरिए सीधे दुर्ग पहुंचने की जानकारी दी थी, जबकि कांगो से लौटा एक व्यक्ति पहले मुंबई में रुका और इसके बाद दुर्ग पहुंचा। प्रदेश में इबोला वायरस से जुड़े संदिग्धों का यह पहला मामला सामने आने के कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के सिलफिली के पास एक यात्री बस से 20 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की ओर से आ रही एक यात्री बस में गांजा ले जाए जाने की सूचना ग्रामीणों को मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने दी। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर बस की जांच की। इस दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि मानसून 3 दिन देर से केरलम पहुंचा है। मानसून के 1 जून को केरलम पहुंचने की संभावना थी। केरलम पहुंचने के बाद मानसून को छत्तीसगढ़ तक पहुंचने में 15 से 20 दिनों का समय लगता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। युवा संगम फेज 6 के अंतर्गत दिल्ली से आए 60 सदस्य युवा प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण किया। इस दौरान युवा भागियों को औद्योगिक सुरक्षा, कार्यस्थल सावधानियों और संयंत्र भ्रमण के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने शाला गणवेश वितरण व्यवस्था में बदलाव किया है। सरकार ने 16 जून से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र से पहले ही यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। राजधानी रायपुर के सड्डू और माना सहित राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में रिक्त सीटों के लिए 29 मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और जांजगीर चांपा जिले की अमिता

ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। चांपा पहुंचने पर परिजन और नागरिकों ने उनका स्वागत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय चुनाव के तहत मतगणना के बाद आज परिणाम घोषित किए गए। अध्यक्ष के 5 में से 3 पदों पर भाजपा और 2 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। जशपुर जिले की सरदी ग्राम पंचायत सहित 42 पंचायतों को आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश में होंगे अनेक कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कल रायपुर में एक पेड़ माँ के नाम शुभारंभ करेंगे। और दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजने को है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, इस सफर का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको सुनवा रहे हैं ताल फिल्म का गीत, सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा इस गीत को A.R. रहमान ने। और ईमेल के ज़रिए जिन मित्रों ने इस गीत को पसंद किया है उनके नाम हैं करनाल से सुधीर, संदीप, जगमोहन और प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभादेवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन, रसेरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश, इंदौर से नारायण, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, बागबहरा से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, पंजाब से भूषण, विशाल, विशु, लाडी, शालिनी, वानी और आरबी खेड़ा, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, गुरनी, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र, दिल्ली से लाल बाबू, उमा राज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा, डॉली, कबीर, देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रतीम, प्रीतम, धनराज मरकाम, बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जयहिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, अकोला से सुशीला देवी, सदानंद, गौरव, आरव, अर्पिता, पैठन से सुरेश, अनीता, आरती, पूजा, सोनल सिया, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम, यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, जलालाबाद से माफ कीजिएगा जालंधर से संदीप, ज्योति, मन्नत, भारत और कमल साहनी, दूलापुर यूपी से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, दूलापुर यूपी से मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, पंकज, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर, सहारनपुर से सुरेश, आशु, सोनाली, अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल, चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह, जनकपुरी से पिंटू, राजेंद्र सिंह, हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है जाखोद से शंभुदयाल कटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक ने, पडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती बघेल, गाजीपुर यूपी से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति, पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र, चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष, और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डब्वाली से राजेंद्र, अंजू, मोहित, दानी।

महाराष्ट्र से अमोल शोभा दीपाली श्लोक, जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर राजबत्ती टोप सिंह, काजल पूर्वी हेजल राजेश रेशमा साहू। और इसी गीत की फरमाइश लिख भेजिए गुमला से नजमुल होदा एस एम जावेद शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श राबिया शेख शेख इब्राहिम मुन्ना, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से सुरेश मल्होत्रा लक्ष कोयल नानक चंद्र मल्होत्रा, लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी प्रमीला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, धमतरी से कोमल सेन तोशन विनायक सेन, कुलगांव से पांडुचंदन उषा प्रतीक्षा प्रथमेश पांडू रंग, रायगढ़ से शिवकुमार चौहान संक्रांति रितेश राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, मालोट पंजाब से राज शर्मा मीना योगेश निवान सौरभ शाइना और मैंडी शर्मा, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंत और मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा प्रिया विशाल निशानी निमित, और धनौरी से निसार सलमानी नौशाद सलमानी आलिया और अयान। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है सहारनपुर से आंसू, गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी फरीन अब्बासी और दानिश, रायपुर से विनोद वीणा विविधा, राजनांदगांव से हमारे साथी हैं बबलू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल प्रतीक्षा समीक्षा आराध्या, महाराष्ट्र से रुपेश महेश प्रज्ञेश प्रीतेश, भागलपुर से कमल किशोर साहू अश्वनी अमरदीप पशुपति टीकू मुस्कान, दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से हमारे श्रोता हैं सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष रवि शनि रेयांश कान्हा आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले वंदना आदेश कुमार और वसुधा, और ग्वालियर से सुरेश खुराना किरण लाव्या आरव और एस के पप्पी ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो लीजिए इन सब की फरमाइश पर ताल फिल्म का गीत।

ओए रत्ता जोगी।

गीत सुने। ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 7:10 होने को हैं। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष श्रृंखला अभी आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे। आज का विषय है स्वास्थ्य सेवा। ये कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
2: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रही हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
3: बहुत-बहुत नमस्कार।
2: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
2: जी,
3: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
2: जी,
3: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
2: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के

0: रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
1: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 3540 रुपए के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है

0: उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 3540 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पे इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है। तो
1: जी
0: जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है, वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है, उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं।
1: जी
0: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए, वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे। और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ, उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है, और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है, कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन, और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था, उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़,
1: जी
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
1: जी
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं, ये लगभग 1900 से ज़्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, इनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हज़ार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हज़ार। अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फ़ायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है

0: वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की उसके साथ जोड़ के वयो बंधन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है। इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके।

0: सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
1: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पांच साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पे तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी, आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PHC जुड़ जाता है।
0: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
1: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है।

0: दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम आधुनिक पद्धति का भी हो
1: जी।
0: और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो। इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बड़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जांपल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहाँ से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता करी है जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
0: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। 87 करोड़ 140 145

0: स्क्रोल में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phansi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सके जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस, सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को

0: और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 200,000 से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है, और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10,00,000 से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है, मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू विल लिसन

श्रोताओं, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी आप सुन रहे थे एक विशेष श्रृंखला के तहत स्वास्थ्य सेवा पर केंद्रित बातचीत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बेटा फिल्म का गीत। समीर की रचना थी और आनंद मिलिंद का संगीत था। कार्यक्रम में लीजिए पेश है कुणाल गांजावाला की आवाज में मर्डर फिल्म का गीत। सईद कादरी की रचना, अनु मलिक का है संगीत। लीजिए पेश है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं चितपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए पेश है अरिजीत सिंह की आवाज में वन नाइट स्टैंड फिल्म से। शबीत अहमद के लिखे बोल हैं, मीत ब्रदर्स का है संगीत, लीजिए पेश है।

वन नाइट स्टैंड। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये सुरीला सा छोटा सा सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, पेश है साप्ताहिक चिट्ठी पत्री पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली। आज की प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और सुनील चिपड़े की। लीजिए सुनिए।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और सुनील का नमस्कार।
0: सुनील, मौसम अब झटके दे रहा है। कल ही हमको विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है। हम सब बड़े अच्छे मन से एक अच्छी प्रकृति, साफ हवा, पानी, धूल रहित वातावरण, इन सब के बारे में सोचकर कितने खुश होते हैं। लेकिन हमारी अपनी ही गतिविधियों ने जो कुछ हमें दिया है अभी, उससे हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित है और बहुत बुरी स्थिति में हम हैं।
1: जी,
0: प्राकृतिक कुछ घटनाएं हो रही हैं अल नीनो की, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उस फैक्टर को और ज्यादा बढ़ाने में हमारी सारी गतिविधियां सहायक हैं। तो आज कम से कम इस पर्यावरण दिवस पर बहुत सारे संकल्प लेने बस से काम नहीं होगा। जिन पेड़ों को हमने लगाया वो सूख कर मुरझा रहे हैं, उन्हें जिंदा कर लें। जो सड़कों में धूल और धुएं से भरे वाहन घूम रहे हैं, कम से कम कुछ पूलिंग कर लें, चार लोग एक साथ ही चले जाएं। हम सब के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को देने के लिए साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, तो ये सारी दुर्दशा दिख रही है। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कल के इस खूबसूरत दिन के लिए कुछ खूबसूरत संकल्पों और कुछ क्रियाकलापों के साथ।
1: बिल्कुल, हम सब प्रकृति के विज्ञान के सम्मत काम कर पाए,
0: सच
1: यही एक कामना है।
0: सही बात है। और पत्र हमेशा की तरह बहुत सारे हैं, तो शुरुआत मैं इन पत्रों से करती हूँ। ये हमें भेजे हैं हमारे श्रोता हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, सविता, बेबी स्वाति, महेश कुकरेजा, संध्या, दीपक, मोनू उन्नति, कीरत राव बाधवानी, गोविंद साहू, सम्मत लाल साहू, प्रदीप, माही, पूजा छुटकी, शरद और पूरा माखीजा कुटुंब। ये बनियापारा धमतरी से हमें पत्र भेज रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम सुनते हैं और बड़े विस्तार से लिखते हैं। इन्होंने शुक्रवार को 29 तारीख को गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम पसंद किया, उसमें चुहारा भाई और साथियों का पंडवानी इन्हें बहुत अच्छा लगा। और आगे लिखते हैं कि 1 तारीख को आपने तुहर गोठ हमर गीत प्रसारित किया था, बहुत अच्छा लगा, श्रोताओं की बातचीत अच्छी लगी, अंशुल को बधाइयां दे रहे हैं। और अमृतधारा कार्यक्रम इन्होंने 2 तारीख को सुना, डायबिटीज के प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में अरिहंत जैन से जो बातचीत हमने की थी वो इन्हें बहुत लाभदायक लगी, उसका पूरा विवरण इन्होंने लिखा है। और आगे रजनीगंधा कार्यक्रम के लिए शांतनु को बधाइयां दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही उस दिन की। और 90 साल पूरे होने के इस उपलक्ष्य में 3 तारीख को हमने हर दिल की आवाज आकाशवाणी इस शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया था। अंतरा ने रिकॉर्डिंग और बहुत सारे पूर्व प्रसारकों से बात किया था, उसमें लखन लाल भौर, मैडम कविता सिंह और अंबिकापुर के भी एक प्रस्तुतकर्ता रहे, तो ये बातचीत भी इन्हें बहुत अच्छी लगी है और इन सभी कार्यक्रमों के लिए हमें ये ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।
1: और अगला ईमेल है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू का। इन्होंने 30 मई के कार्यक्रम, समन्वित कार्यक्रम के लिए बधाई भेजी है, जो

0: कि तंबाकू से होने वाले नुकसान और तंबाकू के प्रभाव पर बातचीत थी। 2 जून को मोरभुया कार्यक्रम के लिए भी इन्होंने बधाई दी है और संपादक और प्रस्तुतकर्ता श्री महेंद्र साहू जी का धन्यवाद दिया है।
1: क्या बात है, आपको भी पत्र के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा मुकाम पेंड्रा रोड से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश नेहा, वान्या सिंगरौल ने बहुत सारे ईमेल भेजे हैं और बहुत विस्तार से लिखा है। 26 तारीख को उन्होंने समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोरभुइयां सुनी, ये कार्यक्रम इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। महेंद्र साहू जी को ये बधाइयां दे रहे हैं, काफी विस्तार से कार्यक्रम की सभी बातें इन्होंने साझा की हैं। और आगे लिखते हैं कि 31 तारीख को कानून की बात कार्यक्रम भी इन्होंने सुना और लिखते हैं कि बड़ी उत्कृष्ट और जनहितकारी प्रस्तुति रही। हर बार हमारे श्रोता इस बारे में जरूर लिखते हैं और बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अच्छा लगता है सुनील कि ये कार्यक्रम उनके लिए बड़ा उपयोगी साबित होता है। और आगे लिखते हैं कि 31 तारीख को 11 बजे इन्होंने मन की बात की 134वीं कड़ी का प्रसारण सुना और बहुत सारी बातों के संदर्भ में, चाहे वो देश की सफाई की बात हो या बच्चों की पढ़ाई की बात हो, परीक्षा की बात हो, बहुत सारी बातों पर प्रधानमंत्री महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए और देशवासियों से अपील की कि पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, स्वच्छता, खेल और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विषयों पर हम सभी सक्रिय भागीदारी निभाएं। तो ये कार्यक्रम की भी तारीफ कर रहे हैं और आगे लिखते हैं कि 1 जून को अमराई कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ी गीत इन्हें बहुत अच्छे लगे और तुहर गो ठमर गीत में अंशुल की प्रस्तुति इन्हें भी बहुत अच्छी लगी। लगातार ये एनसीआरटी का कार्यक्रम सुनते हैं, उमंग ये कार्यक्रम हम हर दिन प्रसारित करते हैं और इसकी भी तारीफ कर रहे हैं। और 3 तारीख को युवा जगत में महक ने विश्व साइकिल दिवस पर बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जानकारी दी, वो भी इन्हें अच्छी लगी। इस तरह से सभी कार्यक्रमों के लिए हमें ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।
0: अगला ईमेल है सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल, किशन सोनम मानवी पटेल का। इन्होंने लिखा है, 30 मई को सुबह 8:30 पर डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में तंबाकू कारण लक्षण और उपाय संबंध में जानकारी दी गई, उस संदर्भ की बातचीत इन्होंने सुनी, इन्हें अच्छी लगी और आकाशवाणी बिलासपुर को बधाई दे रहे हैं।
1: क्या बात है।
0: 31 मई को प्रसारित कानून की बात, घरेलू हिंसा और समाज में फैली कुरीतियां, इस पर इन्हें बहुत सारी जानकारी मिली और इसके लिए ये बधाई दे रहे हैं। यह है लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: पत्र के लिए इनका धन्यवाद देते हैं सुनील। और तंबाकू के संदर्भ में विशेष जागरूकता हमें इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि तंबाकू का सेवन अलग अलग रूपों में अलग अलग ढंग से अलग अलग उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। और एक जो सर्वे है वो ये भी बताता है सुनील कि यदि 12 से लेकर 15 साल के बच्चों को किसी भी रूप में सिगरेट से या तंबाकू सेवन से जोड़ा जाता है तो वो बड़ी लंबी पारी खेलते हैं, मैंने उनसे फिर छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो तंबाकू की कंपनियां रहती हैं वो टारगेट करती हैं कि ये छोटे बच्चे नशे के आदी हो जाएं और उसके लिए ई सिगरेट और अलग अलग लुभावने ढंग से अलग अलग महक वाले सिगरेट जिसमें तंबाकू की स्मेल ना आए। हम सोचते हैं तंबाकू की स्मेल नहीं आ रही, दुर्गंध नहीं आ रही तो हम उसको ले सकते हैं, तो ऐसे टारगेट करके लोगों को लिया जा रहा है। और गुड़ाखू घिसना हमारे यहाँ एक आम बात है, हम ये भी नहीं सोचते कि वो भी तंबाकू का ये एक रूप है, हमें समझ में नहीं आता है। तो अलग अलग रूपों में ये उपलब्ध है और हम उसके शिकार हो रहे हैं, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है।
0: जी बिल्कुल, और विज्ञापनों के प्रभाव में ना है।
1: बिल्कुल सही।
0: नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता वर्मा ये लिखते हैं कि 1 जून 2026 को आज सुबह रोचक जानकारी के साथ था, सदाबहार नगमे कोकिला सुमन कल्याणपुर पर था और तुहर गोठ हमर गीत की मनमोहक प्रस्तुति के लिए अंशुल को ये धन्यवाद दे रहे हैं।
1: क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका पत्र आया हम तक, पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। पहले ये हमें पोस्ट कार्ड भेज रहे थे लेकिन अभी कुछ समय से इन्होंने ईमेल भेजना शुरू किया है, अच्छा लग रहा है। अगला पत्र हमारे पास आया है नानगाट कतलबोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत का। और बहुत सारे कार्यक्रमों के संदर्भ में लिखते हैं कि हम आकाशवाणी बिलासपुर के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, सुबह के आराधना से लेकर युवा जगत, तुहर गोठ अमर गीत, ईमेल करें, रजनीगंधा, ये सभी इनको बहुत अच्छे लगते हैं। 31 तारीख को विशेषकर मन की बात इन्होंने सुनी और जिसमें प्रधानमंत्री महोदय ने गर्मी से बचने की अपील की, नदियों से गंदगी दूर करने की अपील की और ये सारी बातें इन्होंने हमें लिख भेजी हैं। 31 तारीख का रजनीगंधा जो चांद और चांदनी पर केंद्रित था बहुत अच्छा लगा, मदन पांडे को बधाइयां दे रहे हैं और तुहर गोठ हमर गीत के लिए 1 जून के कार्यक्रम के लिए अंशुल को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। रजनीगंधा कार्यक्रम भी अच्छा लगा, सुमन कल्याणपुर पर केंद्रित था और उसके लिए वो महावीर बरगाह को बधाइयां दे रहे हैं। वाकई सुनील हमारे बीच बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, लता जी हो, आशा जी हो, सुमन कल्याणपुर हो, एक दौर के कलाकार रहे और ढेर सारे ऐसे नगमे इनकी आवाज में हैं जो यादगार हैं और अमर हैं, तो श्रद्धांजलि भी, और ये अमर हैं इसलिए हम इन्हें सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे। और
0: कई बार तो आज की जो पीढ़ी है सुमन कल्याणपुर के गीतों को सुनते हुए वो आशा या लता से ही
1: बिल्कुल पहचानना मुश्किल है, उनकी आवाज इतनी मिलती है लता जी से कि अब हम अलग से कह नहीं पाते कई गानों में कि कौन गा रहा है।
0: यही ईमेल है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार।

0: सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र रौनक सेन का आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बड़ा ही सुंदर खुशियों से रंग में रंगे हुए हैं आज हम। ये खुशियों के एहसास के साथ ये ईमेल इनका है। और 1976 से जिस समय छोटे छोटे थे तब से आकाशवाणी रायपुर सुनते रहे हैं, फिर बिलासपुर। सुंदर, भावपूर्ण, शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मनोरंजक, इसके लिए आकाशवाणी को बधाई दे रहे हैं।
1: बहुत सुंदर, इन्हें सभी कार्यक्रम भी पसंद है। सुनील लिखते हैं कि आपकी पसंद माटी के स्वर, ईमेल करे गीत सुने, आप मन के गीत, गूंजे स्वर गांव के, हेलो आपकी पसंद, तुहर गोट हमर गीत, सभी कार्यक्रम इन्हें इतने आकर्षित करते हैं और सभी उद्घोषक और कंपेयर साथियों को बधाइयां दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि इतने अथक प्रयास करके आप कार्यक्रमों को सजा सवार के हम तक साझा करते हैं
0: जी।
1: तो पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं।
0: साथ ही इन्होंने अपने ईमेल में एक सुझाव जोड़ा है कि आकाशवाणी में एक माह में किसी एक दिन एक श्रोता से रेडियो से संबंधित अपने जीवन से जुड़े हुए जानकारी का प्रसारण किया जा रहा है, शायद बहुत सारे केंद्रों से किया जा रहा है, और ये अनुरोध कर रहे हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर भी ऐसा कोई एक कार्यक्रम डिजाइन करे।
1: सही बात है, अच्छी बात है, हम सोचते हैं ऐसा कुछ हो सकता है तो जरूर करते हैं
0: जी।
1: अगला पत्र लेते हैं, ये आया है चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश लहरे, कालिंद अपने पत्र में लिखते हैं कि 2 जून का फोन इन कार्यक्रम में फोन तो लग रहा था लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था और क्यों ऐसा हो रहा था। तो हम अपने श्रोताओं को बताया कि बीएसएनएल वाला नंबर थोड़ा सा हमारा खराब चल रहा है, हमने कंप्लेंट की है, लेकिन फिर भी उसमें जो फोन आ रहे हैं वो या तो मिस हो रहे हैं या हम तक मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक ये ठीक हो जाएगा।
0: अभी मौसम का जिस तरह से प्रभाव सभी लाइनों में आ रहा है,
1: सही बात है। और आगे लिखते हैं कि इनको केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में जो विशेष कार्यक्रम हम लगातार अभी प्रसारित कर रहे हैं वो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी जानकारियां भी इनको उस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही हैं, और हर दिल की आवाज आकाशवाणी के अंक ये सुन रहे हैं वो भी इन्हें अच्छा लग रहा है, सभी कार्यक्रम पसंद कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि कृपया फोन इन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को थोड़ा व्यवस्थित कर लें तो अच्छा लगेगा। तो कोशिश चल रही है, अगली बार शायद आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं।
0: ये ईमेल है विनेश कुमार रागिनी मुस्कान बरेली कैंट चनहटी उत्तर प्रदेश का। ये लिखते हैं कि सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, फेसबुक पर भी आकाशवाणी बिलासपुर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इन्होंने लिखा है कि 3 जून को रजनीगंधा कार्यक्रम ऐश्वर्या जी ने सुमन कल्याणपुर पर पेश किया, इन्हें अच्छा लगा, और आकाशवाणी के 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा में सुप्रिया मैम की प्रस्तुति और अंतरा जी के प्रोग्राम में इन्होंने कार्यक्रम अधिशासियों की बातचीत सुनी, ज्ञानवर्धक लगी। 1 जून को सदाबहार गीत प्रोग्राम अच्छा लगा और आज सुबह की प्रस्तुति भी अच्छी लगी। 31 मई के प्रोग्राम सदाबहार गीत के लिए ये धन्यवाद दे रहे हैं, और 28 मई को चिट्ठी मिली प्रोग्राम में ढेर सारे ईमेल शामिल किए, इसके लिए ये प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं और दिल से धन्यवाद दे रहे हैं।
1: बिल्कुल सुनील, हमारे श्रोता बहुत खुश होते हैं जब सारे पत्र शामिल हो जाते हैं, तो वो बात तो है। और आपने बहुत सुंदर सा पत्र लिख भेजा है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और एक और अनुरोध अपने श्रोताओं से करेंगे कि अभी आकाशवाणी बिलासपुर का जो चैनल है वो फेसबुक पर है, यूट्यूब पर है, ट्विटर पर है और इंस्टा पर है, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक श्रोता उन कार्यक्रमों को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हम इन कार्यक्रमों की जो पॉडकास्टिंग कर रहे हैं मतलब जो अच्छे कार्यक्रम वो हमेशा आपको वहां सुनने को मिलेंगे। हाँ। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि जितना ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, चारों चैनल पे आप जाएं, सभी जगह पर हमारे कार्यक्रम शेयर किए हुए हैं।
0: और श्रोता हमें कई कार्यक्रमों के पुनः प्रसारण का अनुरोध करते हैं।
1: हाँ।
0: पुनः प्रसारण के लिए अनुरोध करते हैं, उनका ये सोल्यूशन है कहना
1: सही बात है, एक रास्ता निकल गया है कि अब ये पॉडकास्ट कहलाता है, अब हमने इनको अलग अलग चैनलों पे डाल दिया अच्छे कार्यक्रमों को, तो आप कभी भी जब आपका मन हो उन्हें सुन सकते हैं।
0: और हम तो ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारी जानकारी यदि उन श्रोताओं को किसी और रिश्तेदार या दोस्तों को पहुंचानी है किसी बीमारी के संदर्भ की, किसी कानून के विषय की, तो वो उनको सुनने के लिए रेफर कर सकते हैं।
1: सही बात है, तो हम इसको और बढ़ा रहे हैं ताकि और ज्यादा कार्यक्रम हम इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट में आपको दे सके, ताकि आप जब चाहें इन पसंदीदा कार्यक्रमों को एक बार फिर सुन सकें। तो अब ये अगला पत्र मैं लेती हूँ, ये आया है सुनील हमारे पास नैला बोरसरा जांजगीर से, हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अंजुलता, उमा, मीनाक्षी, अमन और विष्णु प्रसाद तिवारी का। इन्होंने भी सभी कार्यक्रमों को पसंद किया है और नाम लिख भेजा है कि ईमेल करे गीत सुने आपकी पसंद, माटी के स्वर, खेती की बात, हेलो आपकी पसंद, सब अच्छा लगता है। हमें भी अच्छा लगा कि आपको हमारे सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।
0: और अगले ईमेल में एक सुझाव फिर से है, आकाशवाणी बिलासपुर के सभी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं से निवेदन है कि वे कार्यक्रम प्रस्तुत करने से पहले अपना नाम जरूर बताएं। और ये निवेदन कर रहे हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री।
1: आकाशवाणी के प्रसारण में बहुत ज्यादा अपने आप

0: अलग से दिखाने की परंपरा रही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष प्रस्तुतियां जिसमें हमारे उद्घोषक अपने ढंग से उसे अपना एक रंग देकर प्रस्तुत करते हैं, वहां जरूर वे अपना नाम बताते हैं। आप उन कार्यक्रमों को मत छोड़िए, चाहे वो आज सुबह हो चाहे रजनीगंधा हो।
1: कई बार वैरायटी के लिए जरूरी नहीं होता कि हम शुरू में नाम बताएं, कई बार आखिरी में नाम बताते हैं, और कई बार किसी एक प्रोग्राम में नाम बता दिया तो उसके बाद का प्रोग्राम भी वो पेश कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं समझते, क्योंकि श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं।
0: बिल्कुल, तो आपको बने रहना पड़ेगा। एक छुपी हुई सी बात है, ढूंढ निकालिए आज का।

0: ईमेल करेगी सुने माटी का स्वर, आपकी पसंद इस हफ्ते का अच्छा लगा, आपको बधाई, पत्र के लिए आपको भी धन्यवाद।
1: अगला ईमेल है भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, वसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम, सियाराम, सूरज बारीकर, नारायण यदु। ये लिखते हैं कि 28 मई को प्रसारित चिट्ठी मिली कार्यक्रम बेहद पसंद आया, जिसे मोनाली ठाकरे जी और भाई महावीर बरगाह जी ने प्रस्तुत किया। 29 मई को शांतनु कपूर द्वारा पेश किया गया कार्यक्रम यादों के झरोके से, 31 मई को पुष्पा साव जी द्वारा माटी के स्वर कार्यक्रम और 31 मई को ग्राम सभा कार्यक्रम में नंदू भाई की पेशकश इन्हें बहुत अच्छी लगी।
0: क्या बात है।
1: और आगे इनका ईमेल ये कहता है कि 31 मई को मदन पांडे द्वारा पेश किया गया रजनीगंधा इन्हें पसंद आया, और 1 जून अंशुल गुलकरी द्वारा पेश किया गया यादों के झरोके से कार्यक्रम पसंद आया, जो कि सुमन कल्याणपुर पर था, और 2 जून को शांतनु कपूर द्वारा किया गया रजनीगंधा कार्यक्रम इन्हें अच्छा लगा।
0: क्या बात है। 3 जून को इन्होंने आकाशवाणी के 90 साल वाला कार्यक्रम भी सुना और उसके लिए भी हमें बधाइयां दे रहे हैं। ये इतने पुराने श्रोता हैं सुनील हमारे कि ये उन सभी लोगों से जुड़े हुए हैं जो आकाशवाणी में सन 1991 से यहाँ प्रसारित होते रहे हैं या जुड़े हुए हैं, तो आपको और आनंद आएगा क्योंकि आप उन सब लोगों को जानते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो पत्र के लिए इनका धन्यवाद देते हैं। और अगले ईमेल आए हैं बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति के। 31 तारीख का ग्राम सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और आप मन के गीत कार्यक्रम के लिए ये हमें बधाइयां दे रहे हैं। और 3 तारीख को हेलो आपकी पसंद भी बहुत अच्छा लगा, पद्मा जी ने बहुत सारे श्रोताओं से बड़ी उपयोगी बातचीत की और उनके पसंद के खूबसूरत गीत सुनवाए, तो पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद।
1: अगला ईमेल ये बता रहा है 28 मई को मोनाली ठाकरे दीदी और महावीर बरगाह जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें पसंद आया, 29 मई को प्रिय दीदी जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम और 30 मई को ही महावीर भैया जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम, 31 मई को मदन पांडे जी द्वारा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, 1 जून को महावीर जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम सुप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर पर था, 2 जून को सुबह 7:30 बजे अपेक्षा जी द्वारा प्रस्तुत सदाबहार नग में कर्णप्रिय लगा, 2 जून को शांतनु जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम अच्छा लगा, 2 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर से अनुप्रसारित समन्वित कार्यक्रम अच्छा लगा। श्री महेंद्र साहू जी को ये बधाई दे रहे हैं। 2 जून का ही रात 8 बजे डॉक्टर दीदी द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर साहब से विस्तार से बातचीत सुनवाई गई, इन्हें ज्ञानवर्धक और उद्देश्यपूर्ण लगी। 3 जून को प्रस्तुत रजनीगंधा कार्यक्रम जो रात पर केंद्रित था इन्हें अच्छा लगा। ये ईमेल करने वाले हमारे श्रोता हैं तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल, मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा, ये धन्यवाद दे रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर को।
0: सच बात है, बहुत सारी दीदी और भैया लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया है सुनील। पूरे हफ्ते का कार्यक्रम की समीक्षा लिख भेजिए। चलिए, सभी दीदी और भैया लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाइयां पहुंच रही हैं। तो अब हम कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं, इससे पहले हम अपने श्रोताओं को पता बता देते हैं। पोस्टकार्ड से अभी भी खुला है मार्ग, यदि पोस्टकार्ड तो अभी आ नहीं रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन फिर भी आप भेजना चाहते हैं तो हमने चिट्ठी मिली में इसका रास्ता बना रखा है। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, नूतन कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर। हमारा पिन कोड है 495006।
1: और हमारे ईमेल का पता है patra@gmail.com।
0: क्या बात है। तो इंतजार रहेगा आपके ढेर सारे पत्रों का, लेकिन उसके बीच में ये भी आग्रह रहेगा कि आप वाकई में आने वाले मौसम के उतार चढ़ाव से बचे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खूब सारे कार्यक्रमों को सुने, हमारे सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले कार्यक्रम में जरूर पत्र भेजें।
1: जी,
0: तो अब कार्यक्रम से अनुमति लेते हैं। सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और सुनील का
0: नमस्कार।

जो फोन पर ही होगी। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी नेचुरोपैथी और योगा की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल। आपसे बातचीत का विषय होगा महिलाओं के स्वास्थ्य में योगा की भूमिका। इस बातचीत में भाग लेने के लिए आप हमें फ़ोन करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। आप हमारे इन नंबरों को नोट कीजिए जिसके तहत आप हमें कॉल लगा सकते हैं। नंबर है 310026 और दूसरा नंबर है 266592। याद रखिए इन दोनों ही नंबरों को डायल करने से पहले आप बिलासपुर का स्टडी कोड अवश्य लगा लें। बिलासपुर का स्टडी कोड है 07752। तो 5 जून को दोपहर 3:30 के बीच हम करेंगे आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार। विषय एक बार फिर सुन लीजिए, महिलाओं के स्वास्थ्य में योगा की भूमिका। विशेषज्ञ होंगी नेचुरोपैथी और योगा की डॉक्टर अर्चना अग्रवाल। सूचना यहीं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। लीजिए अब पेश है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राग बागेश्वरी पर आधारित वायलिन वादन। कलाकार हैं डॉक्टर एन राजन। लीजिए पेश है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी मिली। आज की प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और सुनील चिपड़े की। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको इस वक्त देते चले। श्रोताओं, कार्यक्रम महिला सभा से संबंधित है। कार्यक्रम महिला सभा में स्वास्थ्य वार्ता का प्रसारण महीने के दूसरे मंगलवार को किया जाता है। इस माह इसका प्रसारण 9 जून को शाम 5:35 पर किया जाएगा। इसके लिए रिकॉर्डिंग की जाएगी 5 जून दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 3:30 के बीच।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के आज के कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया राग बागेश्वरी पर आधारित वायलिन वादन। कलाकार थे डॉक्टर एन राजम। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।
1: विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजिन है।
1: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
2: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरल में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का

0: Pradesh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
1: श्रोताओं, समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। अब से

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे और ठीक 11 बजे समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर। तो चलिए इस वक्त फिलहाल जुड़ते हैं विविध भारती से।

लता मंगेशकर के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म अनामिका में। रचनाकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले का ही गाया एक और गीत सुनते हैं अली बाबा 40 चोर से। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, वो लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन। इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थीं। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म का।

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थीं। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हट के चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन, अदाकार देवानंद।

0: अन्ना क्या कहेगा।
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ हेरोइन का रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई।

0: 1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।
1: एक

इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने।

60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र।

0: जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में, प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।
1: सावन का महीना पवन करे सोर,

रे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों, अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।

1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक सिधार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

छायागीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। शायद यही तो प्यार है, जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है। जलते

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

0: तड़पा लो।
1: अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ। अपने सारे गिले, अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ। तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

अज समझे

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

तेरी मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

0: श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। समाचारों के लिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे आकाशवाणी दिल्ली की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका

0: आवश्यकता में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela